0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणवीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड टेम्पेटिव रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: आप सुन रहे हैं CMRF 9, Monday to Friday, 9 AM to 11 AM. Stay tuned.
2: कयामत कोई

0: just don't care.
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।

0: iconic sight Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक. जी हाँ, 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे. प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स. 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000. पहली अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्टिव रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज है बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
2: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक. जी हाँ, 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे. प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स. 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000. 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर.
4: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.

0: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारबरो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणवीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। पहली अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।

0: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000, 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माई मैकेनिक ऑटो.ca।

0: राजधानी राजधानी राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: at 11. Only on CMR 101.3 FM.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
2: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1st अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक. जी हाँ, 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे. प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स. 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000. 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस.
3: Reliable auto care ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाएं Active Green and Ross पे at Warden and Lawrence. वहाँ बदलवाएं अपने seasonal tires और करवाएं सभी makes and models की full service. साथ ही ले 30 point inspection free. Major tire brands पर great deals और full body repair service plus insurance covered repairs भी. पर सिर्फ Warden and Lawrence location पर ही. आज ही appointment लें. Call Ramesh at 416-990-2462. Active Green and Ross, where your car gets the care it deserves.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
4: Preet ki lat mohe aisi lagi.

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000, पहली अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड। एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड। न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड।
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा।
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक। पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम।
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम। स्टे ट्यून्ड।

0: The advertisements, views and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests and callers and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। सोनू निगम की आवाज में अपने का टाइटल ट्रैक, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अपने तो अपने होते हैं और इन द एंड जो है आपके अपने ही हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं मुश्किल की घड़ी में। अप्रिशिएट दोज पीपल दैट आर इन योर लाइफ। बस इससे ज़्यादा और कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। आप सब समझते हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं हैं, कौन पराए हैं, कौन अपने होके भी पराए हैं, कौन पराए होके अपनों से ज़्यादा हैं। सो ऑल दोज ब्यूटिफुल पीपल दैट आर इन योर लाइफ, जस्ट अप्रिशिएट दैम। बाहर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 20 एंड सनसेट होगा 7:04 पर। मैक्सिमम टेम्परेचर्स टुडे एट 21 एंड मिनिमम 15, क्लाउडी सॉर्ट ऑफ अ डे एंड टुमारो 22 एंड 14, वेंसडे 23-18 एंड थर्सडे को टेम्परेचर्स शूट अप करेंगे 26 डिग्रीज, बट देन द फॉलोइंग डे फ्राइडे एंड सैटरडे अगेन 18 डिग्रीज सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर्स एंड देयर इज सपोज टू बी रेन एज वेल towards the end of the week. Studio ka number 416-593-0055 aur Monday ka din hai, September 28th hai. We are almost at the end of this month and iske baad jo hai 3 mahine bach jayenge 2026 ke, October, November, December, and waise bhi festive season and all that season, beautiful times are starting. Pehle Shraddh hote hain, fir Navratri, fir Diwali and fir Christmas, so all the beautiful time that aap apne parivar ke saath enjoy karein. Hopefully you had a great weekend. वीकेंड का वेदर बड़ा ज़बरदस्त था एंड ब्लू जेस की गेम थी, सो ऑब्वियसली टोरंटो डावर्स एंड टोरंटो डाउनटाउन काफ़ी हलचल रही टोरंटो डाउनटाउन में। एंड 12:15 की हेडलाइंस हमारी बिल्कुल रेडी है। 1:15 यानी 12:45 स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी भी हमारे साथ होंगे। द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी एंड ब्रैम्पटन, जहाँ पर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री की ज़बरदस्त डील्स जो है उसका आगाज हो चुका है। यू हैव टू जस्ट टेक एडवांटेज, बी देयर एट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 905-206-1008। सैटरडे आफ्टरनून 12:30 से 3:30 होता है फ्री सेमिनार। ऑल यू हैव टू डू इज प्लीज अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए 905-206-1008। एंड इसके अलावा काफ़ी मैसेजेस आप तक पहुँचाने हैं। एंड डाउन टाउन नॉर्थ बाउंड University down to one lane from Armory Street to college until spring for water main break. And a ceremony held on Queen's Quay as city adds 14 fallen firefighters to memorial honor roll in Toronto. So, unhe honor kiya ja raha hai and baki bugle jo hai baj gaya hai elections ka. Ab sirf October 26th ko elections hai. So, uski already hum dekh rahe hain darwazon pe politicians ya wannabe politicians aapke darwazon pe aa rahe hain aur apni apni pitching kar rahe hain for city councillor, regional councillor and even some of the mayoral candidates ki race mein jo bhaag rahe hain. Brampton ki hum baat kar rahe hain, meri khud ki city ki, to wahan par ek poll hua hai एंड उस पोल के हिसाब से पैट्रिक ब्राउन जो है काफ़ी लीड कर रहे हैं, काफ़ी लंबी अच्छी खासी लीड उन्होंने बनाई हुई है। सो उसके अलावा आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है एंड यू नो व्हाट रियली कम्स आउट ऑफ इट। और जो पब्लिक है वो सब जानती है, लेकिन कई बार जानने के बावजूद भी पब्लिक से भी गलतियाँ हो जाती हैं एंड दैट्स हाउ इट इज़। बट एक बार हो गई गलती तो फिर अगले 4 साल तक इंजॉय करें जिसको भी आप चुनते हैं। न्यू नंबर्स शो ऑटो थेफ्ट 10% ड्रॉप हुई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर कंपेयर टू 2025। पील रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। सो एंड अनीता आनंद को होस्टिंग मीटिंग एम्ड एट एडवांसिंग वर्क टू रिटर्न यूक्रेनियन चिल्ड्रन अबडक्टेड बाय रशिया। एंड चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ओपीपी ने एक ड्राइवर को 205 किलोमीटर पर आवर पकड़ा है ऑन पाइन वैली ड्राइव अर्ली सैटरडे मॉर्निंग इन वॉन। 205 kilometers the guy was going on. Mayoral candidate Brad Bradford kehte if he's elected, he'll cut water bills by 25% on first $1,500. Bradford ka kehna hai, he'll also make Toronto Water a publicly owned utility similar to like Toronto Hydro. So, ab to promises hi promises honge. Dekhte hain kya hota hai aage chalkar. Chhoti si break lete hain. 12:15 ki headlines lekar foran aate hain. Wapas.
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX 350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं जहां मिलती है वो लग्जरी जो आप लेक्सस से एक्सपेक्ट करते हैं गैस की कन्वीनियंस के साथ लीज रेट सिर्फ 2.9% से विद $618 पर मंथ पे आज ही डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com पर विजिट करें A proud member of Wint Auto Group.
2: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज होम इक्विटी रिन्यूअल्स बैड क्रेडिट इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक बेस्ट रेट्स बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी 6478631940 6478631940
3: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296 इट्स 289-891-0296 आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम Remember, you're in good hands with Allstate.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 स्पोर्ट्स सिर्फ 1.9% से, या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे एंड हम बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288557 अनाज मार्ट।
4: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Care, McVean Dental Care, Home Life, Platinum Realty, as well as Brampton TV and Appliances, Grand Home Furniture. Shuru karte hain taza tareen headlines. Donald Trump ka kehna hai ki UK airbase terror suspects were planning big damage to our fort. US diplomat ke mutabik Trump ka Iran ke naye peace plan ko reject karne ke piche wajah thi. There is no confidence in Iran and America ka kehna hai ki we are winning. China se do giant pandas pahunche US panda diplomacy program ke tehet China ise loan karta hai. External Affairs Minister S. Jai Shankar ne United Nation mein Pakistan ko phatkar लगाते हुए कहा पाकिस्तान इज सीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्म. यूनाइटेड नेशन में इंडिया के बिड फॉर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल सीट को रशिया ने बैक किया. पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अक्टूबर 7 का अटैक ऑन इजराइल इज लाइक 9/11 हैपनिंग 16 टाइम्स. ट्रंप की फॉर्मर लॉयर अलीना हबा 42 ने स्टार स्टडेड वेडिंग में 29-year-old टर्किश बिलियनर से की शादी. And United Kingdom में US base के पास वाले घरों को evacuate करवाया गया. Men detained over explosive offenses. South Africa में bar और store पर हुई दो mass shootings में 27 लोग मारे गए. 8 gunmen armed with assault rifles ने bar में की थी firing. Bangkok में 52,000 से ज्यादा घरों में हुई flooding. Thousands moved to shelters. And Thailand में एक महीने की बारिश कुछ ही दिनों में हुई. Bangkok under waste. Deep water. Local समाचारों में Calgary में Alberta Ontario premiers की होगी मुलाकात. Talk energy policy. And Toronto में man in his 30s killed in motorcycle crash. Brampton crash के बाद one person in life threatening condition. Toronto में parked car को vehicle ने मारी टक्कर, दो हुए जख्मी. And Scarborough commercial property पर gunfire damages parked vehicle. Toronto के Little Italy में suspect ने victim को गले लगाया और फिर उनका necklace चुराया. भारतीय समाचारों में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए वायलेंस को लेकर अकाली दल बीजेपी कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को टारगेट किया. कॉलेज स्टूडेंट्स को हरास करने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 लॉ स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड. टॉप डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि बिल्डिंग एन AI स्पाइन फॉर आर्म्ड फोर्सेज, AI विल ट्रांसफॉर्म बैटल फील्ड एज वेल. पाकिस्तान थ्रेट पर डिफेंस चीफ का कहना है कि हम तैयार है टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड डिसाइसिवली. गणेश इमर्शन के दौरान हैदराबाद जिम ओनर को चार्ज किया गया फॉर हरासिंग अ वुमेन कॉप, कंप्लेंट हुई दर्ज. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना. एंड नेवी चीफ ने थ्रेट्स को लेकर कहा इंडियन ओशन रीजन अमंग मोस्ट मिलिटराइज्ड. एंड सैमटल CEO ने विकसित भारत गोल पर कहा टेक्नोलॉजी मस्ट बी ओन्ड इन इंडिया. एंड स्वीडिश डिफेंस फर्म साब ने इंडियन सप्लायर्स की चाहत जताई एज पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. अडानी ग्रुप ने धमरा पोर्ट ने इतिहास रच दिया है टू रन फुली ऑन रिन्यूएबल पावर. दिल्ली मिनिस्टर परवेश वर्मा ने आपा खोया स्लैप्स बैन फिल्मिंग इंस्पेक्शन. यह हादसा तब हुआ जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर एक रोड को इंस्पेक्ट करने पहुंचे थे. आर वीरामणि केस में एक और महिला ने कहा माइनर डॉटर वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड. एंड डिफेंस सेक्रेटरी ने $34 बिलियन की 114 रफेल डील को डिफेंड करते हुए कहा तेजस इज ऑन ट्रैक. पाकिस्तान की खबरों से केपी के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि लॉन्ग मार्च डेट को बदलना गलत फैसला था. लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार नहीं थी. रेजिस्टेंस के बावजूद मैं 3 बार इस्लामाबाद पहुंचा था. PLM नून लीडर ने गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर से गुहार लगाई टू राइज अबव ईगोज एंड होल्ड टॉक्स. साद रफीक ने वार्निंग दी कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्रेंटेशन से ज्यादा नुकसान होगा. टाइमली एफर्ट्स से मुद्दा रिजॉल्व होंगे. पाकिस्तान में फिलहाल मल्टीपल क्राइसिस चल रही हैं. लाहौर में फॉरेन महिला के रेप केस में पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया. 4 मार्च को पहली बार महिला लाहौर पहुंची थी. सेकेंड टाइम शी रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 22 मई. क्लोदिंग बिजनेस के लिए शी ट्रेवल टू फैजलाबाद ऑल्सो. 3 लोगों ने उन्हें कैफे में इनवाइट किया और ड्रग लेस सब्सटेंस देकर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया. मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स रेप. पाकिस्तान ने तालिबान रिजीम से गुहार लगाई टू टेक एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स. अफगानिस्तान के किसी भी प्रोविंस में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है और कहा देयर इज नो एविडेंस एट ऑल. ISPR के अनुसार बलोचिस्तान ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 70 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया और सूत्रों के अनुसार कई बैक चैनल मीटिंग्स के बावजूद PTI और अथॉरिटीज फेल्ड टू ब्रेक डेडलॉक. गौरतलब है कि बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व नो कमिटमेंट टू रिलीज इमरान खान. PTI ने फिर से गवर्नमेंट के साथ बातचीत का ऑफर दिया मगर बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया.
स्पोर्ट्स जगत से इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के फर्स्ट ओडीआई में कैप्टन शुभमन गिल ने 110 रन बनाए, विराट कोहली नॉट आउट ऑन 139 रन, प्लेयर ऑफ द मैच बने कुलदीप यादव विद 4 विकेट्स. और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के फर्स्ट ओडीआई में इंडिया वन बाय 8 विकेट्स, वेस्ट इंडीज मेड 295 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, इंडिया मेड 300 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड 41.4 ओवर्स. इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्नी मार्कल ने विराट कोहली रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप रोल को लेकर कहा, दे विल बी देयर टू गाइड शुभमन गिल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. बॉलीवुड खबरों से रणबीर कपूर के बर्थडे के मौके पर आलिया भट्ट रणबीर कपूर ग्रीट फैंस फ्रॉम देयर 250 करोड़ रुपीज कृष्णा राज बंगलो इन मुंबई. रामायणा के नए पोस्टर्स आए सामने विद रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे एंड यश, फैंस कॉल देम मैग्निफिसेंट. और हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस के डे 51 पर 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. राजकुमार राव ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों की बात करते हुए कहा, आई यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड शाहरुख खान बंगलो मन्नत एंड ऑल्सो महानायक अमिताभ बच्चन बंगलो जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज आइडल्स. एंड कोमल रानी ने सुनीता आहूजा को हिट बैक किया आफ्टर अफेयर रूमर्स विद गोविंदा और कहा, स्टॉप यूजिंग माई नेम टू सर्व योर एजेंडा. रणबीर कपूर ने आज अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट किया, गेट्स रेडी फॉर 2 बिग रिलीजेस दिस ईयर, रामायणा एंड लव एंड वॉर. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0005. द हेडलाइंस वर ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम इन GTA, बियॉन्ड GTA, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट. आज रणबीर कपूर साहब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ उनके गीतों से भी आपको एंटरटेन करने का इरादा है. सवरिया का उनकी पहली फिल्म 2007 में आई थी, उसी का एक प्यारा सा गीत शान की आवाज़ में हमने लाइनअप कर दिया है, वो आपको सुनाते हैं. जब से तेरे नैना, इंजॉय करें. बाहर का तापमान 19, फील्स लाइक 21. एंड मैं आपको बता दूं, देव सागर एंड हिज टीम की जो ग्रैंड ओपनिंग हुई है होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी की, वो ग्रैंड ओपनिंग फ्राइडे को थी, बड़ी ज़बरदस्त रही. वी वर ऑल देयर एंड ऑफिशियली द डोर्स हैव ओपन टू होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी एंड आपको इन्वाइट करते हैं टू जॉइन देयर टीम. और सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑफिस इज लोकेटेड एट 4284 विलेज सेंटर कोर्ट मिसागा एंड होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस मिलेगा. लिमिटेड टाइम के लिए नो डेस्क फी फॉर रियल्टर्स, अनलिमिटेड सोशल मीडिया प्रेजेंस मिलेगी, आपके वीडियोस क्रिएट किए जाएंगे, ऑडियोज क्रिएट किए जाएंगे, बेस्ट स्प्लिट्स इन द मार्केट. एंड सबसे बड़ी बात है, ऑल एडमिन वर्क टू बी डन बाय द ब्रोकरेज फॉर यू, सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर स्टफ. कॉल करें 647-859-2000, 647-859-2000. We'll take a song break. Aate hain wapas.

0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda.
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा cholebhature.ca पे चलो।
6: cholebhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। cholebhature.ca, कॉल 9054582448.
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040. सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पी वी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111. काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
8: Welcome back friends, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्टों में पे अमिता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 Cotrell Boulevard, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड, एंड द गुड थिंग इज देयर्स अ ह्यूज पार्किंग लॉट, तो आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बना के जाइए अगर आप पूरा परिवार जा रहा है, एंड इफ यू जस्ट गोइंग बाय योरसेल्फ यू कैन जस्ट स्विंग बाय, नो अपॉइंटमेंट नीडेड। अगर आप दूर रहते तो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप काव्या होम्यो केयर पर मीता जी पिनाक जी से फोन पर कंसल्टेशन करें, दवाई दो एक दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। 647-760-2779 647-760-2779। मीता जी, स्वागत है आपका ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
9: थैंक यू सो मच सनी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो
8: जी, मजा मा, गुड आफ्टरनून मीता जी। और इस स्पेशल मंडे वाले हेल्थ सेगमेंट में आज हम किस स्पेशल टॉपिक के बारे में करेंगे बातचीत?
9: जी, आज हम देखेंगे सनी जी हेमरॉइड्स या पाइल्स जिसको कहते हैं उसके बारे में
8: जी।
9: सो हेमरॉइड्स या पाइल्स क्या हैं कि एनल एरिया की वेन्स आपकी फूल जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम हेमरॉइड्स कहते हैं. अब हेमरॉइड्स कुड बी इंटरनल, कि जिसमें क्या होगा कि अंदरूनी आपको स्वेलिंग लगेगी, और समटाइम्स पेशेंट दे डू फील के प्रॉपर पूरी तरह टॉयलेट पास नहीं रहा, जैसे कुछ अंदर रुक रहा है, अटक रहा है, अंदर की जगह नेरो बन गई है. सो इट कुड बी इंटरनल हेमरॉइड्स. तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब स्ट्रेनिंग होती रहती है, या जिनको इंटरनल ऑलरेडी है, तो आगे जाके वो पार्ट बाहर आ जाएगा. पहले स्टार्टिंग में स्किन टैग की तरह लगता है, फिर स्वेलिंग बढ़ती जाती है, और एक या एक से ज्यादा वो बंच में हेमरॉइड्स बाहर आ जाते हैं. इनिशियल फेज में क्या होगा कि जैसे ही आप स्ट्रेन करते हो या कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके वक्त वो बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये स्वेलिंग हट जाएगी. लेकिन फिर जब भी कुछ खाने पीने में इस तरह ले लिया या कॉन्स्टिपेशन हुआ, अगेन वो स्वेलिंग बाहर आ जाएगी. तो बाद में कंटिन्यूअसली ये मौके बाहर ही रहते हैं, जिसको हम पाइल्स या हेमरॉइड्स कहते हैं. अब ऐसे में क्या होगा कि पेन वाल पासिंग स्टूल के जब भी वो बनने लगते हैं, तो काफी पेनफुल हो जाता है स्टूल पास करते वक्त, और उसके बाद तक काफी घंटों तक समटाइम्स आपको ये पेन या बर्निंग फील होते रहते हैं. और स्पेशली जब स्वेलिंग आ गई है, आपका ड्राइविंग का जॉब है या सिटिंग जॉब है, तो पेशेंट के लिए बैठना भी काफी पेनफुल होता है
8: जी.
9: और इसके साथ टॉयलेट में ब्लड जाना, आप देखोगे कि ये स्टूल के साथ लग के आ रहा है या ड्रॉप्स के फॉर्म में ब्लड जाएगा, और कभी कभार तो पूरा पॉट जो है वो ब्लड से भर जाता है, तो समटाइम्स टिश्यू पेपर पे ही आप नोटिस करते हैं. तो ये ब्लीडिंग इसके साथ होना, और स्पेशली आप देखोगे कि लेडीज में पीरियड्स आने के पहले जैसे ही पेल्विक फ्लोर की ओर ब्लड का रश बढ़ता है, तो 1 वीक बिफोर गेटिंग योर पीरियड्स ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी है. तो पीरियड्स के खत्म होने के बाद थोड़ा फर्क होता है, लेकिन एवरी मंथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी. ये हार्मोनल फेज के टाइम भी होता है. और फिर जिनका जॉब इस तरह का है कि वेट लिफ्टिंग उनको ज्यादा करना पड़ता है, स्टैंडिंग वगैरह का जॉब है, और कोई भी कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, जैसे कि लेडीज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और फिर ये मौके बढ़ते जाते हैं, और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो है तब से स्टार्ट होके आज तक सही नहीं हो रहे हैं. और कई बार क्या होता है कि यहाँ के वेदर करके छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज्यादातर अंदर कट लग जाना, जिसको हम एनल फिशर कहते हैं, तो उसके साथ भी पेन, बर्निंग वाल पासिंग स्टूल, और फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है. एंड काफी बार वहां पे फिस्टुला बन जाता है कि एनल एब्सेस से शुरुआत होके फिर वहां पे एक मुंह बनेगा, टनल सी बन जाती है, और उसके अंदर से पस का ब्लड का डिस्चार्ज होता रहेगा. और ऐसे में वो एनल एरिया के पास ही इसकी ओपनिंग होती है, सो टॉयलेट पास करते वक्त आपको इरिटेशन, पेन फील होना, जब भी वो भरेगा तो बॉयल की तरह, एब्सेस की तरह टस्टस वाली पेन होगी अंदर, और जैसे ही फिर ड्रेनेज होना स्टार्ट होगा आपकी पेन में रिलीफ मिलेगी. लेकिन फिर कुछ हफ्तों में, महीनों में वापस वो भरने लगता है. तो जिनको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम है, सालों से इस कंडीशन से वो सफर करते रहते हैं. सो इन होम्योपैथी वी डू हैव ट्रीटमेंट फॉर ऑल दोज कंसर्न्स, चाहे आप हेमरॉइड से परेशान है, एनल फिशर बना हुआ है, या फिस्टुला की प्रॉब्लम आई है, या फिर कॉन्स्टिपेशन करके आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऐसे में वेट करने की जरूरत नहीं है. ये ट्रीटमेंट से आपको देखोगे कि फर्स्ट मंथ से ही इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगी. ये कुछ ही मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है जो लेने से फिर आप सही हो सकते हैं. इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. प्रेग्नेंट मदर्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, सबके लिए सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. सो काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं.
8: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ, मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है, जहां से आपको सर्व करते हैं. एंड इफ यू आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम हेमरॉइड्स, पाइल्स, किसी तरह की बीमारी से आप सफर कर रहे हैं, तो याद रखें क्लिनिक आपके कन्वीनियंस के लिए इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग, 6 days अ वीक. वॉक इन करें, अपॉइंटमेंट बनाएं, या फोन पर कंसल्टेशन की जा सकती है, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी. 6477602779, 6477602779. मीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
9: थैंक यू सो मच सनी.
8: थैंक यू जी. एंड ऑटो एंड होम इंश्योरेंस को लेकर, आमतौर पे ऑटो इंश्योरेंस को लेकर तो भाई ये टेंशन रहती है कि हर साल रिन्यू होती है आपकी ऑटो इंश्योरेंस, कोई टिकट नहीं मिलती, रिकॉर्ड क्लीन होता है फिर भी इंश्योरेंस ऊपर चले जाती है। ऑल स्टेट इंश्योरेंस की गुरविंदर बामरा जी को कॉल करें, खासकर अगर नया नया लाइसेंस मिला है, या फिर आपकी सिचुएशन वो है रिन्यूअल इज कमिंग अप, यू हैव टू कार्स, टू ऑटोज एंड वन होम, सो उसमें मल्टीपल डिस्काउंट भी मिल जाता है, तकरीबन $2,100 की एनुअल बचत हो जाती है। कॉल गुरविंदर बामरा 6473033207 याद रखना है आपने नंबर। एंड छोले भटूरे .ca चार लोकेशन से सर्व करते हैं, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, टेक आउट डाइनिंग ऑप्शन अवेलेबल एट ऑल लोकेशन, दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे ओनली एट छोले भटूरे .ca। अरिजीत सिंह की आवाज में केसरिया, आज रणबीर कपूर 44 के हो गए हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि, तो उन्हीं के बर्थडे के मौके पर ये गीत फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। फिल्म तो क्या बनाई थी, अब क्या कहें इस फिल्म के बारे में, चलिए गीत अच्छा है। ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन।

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
7: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 647-628-0040, दैट इज 647-628-0040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट स्काई लेक इमिग्रेशन

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड इट्स दैट सेगमेंट जिसका इंतजार होता है, मंडे का दिन है। मनन गुप्ता जी स्काई लेक इमिग्रेशन से हमारे साथ है। इमिग्रेशन की अपडेट अंत में, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कई चीजें हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। नया हफ्ता है, मंथ इज कमिंग टू एन एंड। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055 जिस पर आप कर सकते हैं कॉल एंड आस्क अ क्वेश्चन। जो आप जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उनके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है। मनन जी स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सो वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी। प्रोग्राम को सुन रहे सभी लिसनर्स परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू सो मच
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड सबसे पहले तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। ओंटारियो इन्वेस्टिंग एडिशनल $6 million टू रिड्यूस थेफ्ट ऑफ व्हीकल। ये एक रिपोर्ट आई है आज जिसमें कुछ नंबर्स डाउन नजर आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर।
1: बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, यू नो पब्लिक यू नो कंजप्शन के लिए वो रिपोर्ट आई है जिसको हर तरफ एनालाइज और चर्चा हो रही है। जॉनसी इक्विटी कंपनी की तरफ से ये रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2-3 सालों में जो ऑटो थेफ्ट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसमें अब थोड़ी सी कमी अवश्य देखने को मिल रही है और उसका क्रेडिट ओंटारियो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भी हमने मोर देन $50 million इस स्ट्रेटेजी के ऊपर खर्च किए हैं और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। राहत अब कितनी मिली है ये तो हमारे लिस्टर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी आंकड़ा स्काई रॉकेटिंग है, क्योंकि 2023 में सनी जी तकरीबन 30,134 कारें चोरी हुई थी। ये वो गाड़ियां हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं जी गाड़ी चुरा ली गई, बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं है जी गाड़ी चोरी होगी कहाँ मिलेगी। तब ऑस्टन 82 व्हीकल्स पर डे चोरी हो रहे थे ओंटारियो में, जो अब कम होकर 52 व्हीकल्स पर डे हो गए हैं। तकरीबन 2025 में ये आंकड़ा 19,319 कारों का है। अगर हम इसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें पील रीजन में, तो पील रीजन में गिरावट जो सी पिछले साल के मुकाबले वो 10% के करीब आई है, लेकिन अभी भी पहले 6 महीनों में तकरीबन 2,800 गाड़ियां चोरी हुई हैं, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 15 गाड़ियां पील रीजन मिसिसागा और ब्रैम्पटन में भी हर दिन चोरी हो रही है। सो अब पूछकर उन परिवारों से पूछिए जिनकी गाड़ी चोरी होती है, जिनकी सारी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है ड्यू टू दिस क्राइसिस। सो वी जस्ट होप कि सरकार ने जो आज $6 million एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का यू नो ऐलान किया है वो सही मायनों में लोगों को राहत और रिलीफ अवश्य दे।
0: जी, ऑटवा टेबल्स बिल C-39 विद मेजर कैनेडा लेबर कोड चेंजेस, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज।
1: बिल्कुल, ये पिछले हफ्ते जैसे ही यू नो हाउस ऑफ कॉमन्स खुला है, सरकार अपने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पेश कर रही है। ये जो उनसी बिल्डिंग कैनेडा स्ट्रॉन्ग एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ने मेजर अमेंडमेंट्स ऐलान की हैं कैनेडा लेबर कोड में Part 1 and 3, उसके तहत ये आने वाले समय में जो मीडिएशन जौन सी एफर्ट्स हैं, आर्बिट्रेशन एफर्ट्स हैं, उसके ऊपर सरकार काफी ज्यादा तीखी नजर रखेगी। स्पेशली लेबर यूनियन के साथ जो थोड़े से संबंध है वो थोड़े से खटास में जा सकते हैं इस बिल C-39 के कारण। लेकिन एक अच्छी इसमें जौन सी रिफ्लेक्शन है वो ये जरूर है कि जो कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में मिस क्लासिफिकेशन होती थी उसको लेकर अब एक टारगेटेड क्रैकडाउन एक बार फिर फेडरल सरकार शुरू करने जा रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू ड्राइवर इंक मिस क्वालिफिकेशन, यू नो जौन सा सिस्टम चलता रहा काफी सालों से। सो देखते हैं कि बिल C-39 के रिपरकशंस कहां कहां पहुंचती हैं, लेकिन फिलहाल बिल्डिंग कनाडा स्ट्रांग एक्ट के तहत ये चर्चा का कारण बना हुआ है। जी
0: मनन जी, पील पुलिस ने एक प्रोजेक्ट रेड जोन की डिटेल रिपोर्ट की दी है जिसमें काफी गन्स भी सीज की गई हैं, ये व्हाट एग्जैक्टली इज दिस?
1: देखिए प्रोजेक्ट रेड जोन ये इस पर्टिकुलर अंडरकवर प्रोब का नाम था। इन्वेस्टिगेशन पिछले साल अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, इस साल जुलाई तक चली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट चीज है कोलैबोरेशन का जो एग्जांपल है वो ये है कि पील रीजन के स्पेशलाइज्ड एनफोर्समेंट ब्यूरो ने अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस के साथ मिलकर ये सारी तफ्तीश की है और उसके तहत 23 फायर आर्म्स बरामद किए गए हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन भी साथ में यू नो पुलिस फोर्सेज ने कब्जे में अपने रखा है। 4 लोगों को चार्ज किया है, ये चारों लोगों की उम्र 24, 28 और 23 साल के करीब है। स्टीफन प्रकाश, अक्षय श्रीकांत, सैमी शेख और जनोज दयाभरन इनके नाम है। स्कारब्रो, एजेक्स, मिसिसागा और टोरंटो के ये रहने वाले हैं रिस्पेक्टिवली। इन 23 फायर आर्म्स में से सनी जी 15 जौन सी थी गन्स वो इलीगल तौर पर अमेरिका से कनाडा आई थी। सो सबसे बड़ा जो हमारा एक यू नो इशू है, बर्निंग इशू, वो यही है कि बॉर्डर के ऊपर जो पेट्रोलिंग होती है, बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी चेक्स एंड सर्विलेंस होती है, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, उसी लूप होल्स का फायदा क्रिमिनल गैंग्स उठा रहे हैं। और पता ये भी चला है कि इस जो 23 फायर आर्म बरामद हुए उनमें से एक फायर आर्म जो मिसिसागा में एक शूटिंग हुई थी 2024 में उसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक 37 साल एलेस्टियर रॉबिन्सन की मौत हो गई थी
0: जी। एंड दूसरी तरफ ओंटारियो अनाउंसेस प्लान टू स्टैंडर्डाइज कमर्शियल ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट सामने आई है।
1: देखिए ट्रकिंग इंडस्ट्री में काफी सारी जॉन्सी हैं इंप्रूवमेंट्स की, सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है लेकिन जब कोई खुलासा होता है स्पेशली ऑडिटर जनरल की जब रिपोर्ट्स आती हैं, इन गर्मियों से जस्ट पहले स्प्रिंग में रिपोर्ट आई थी कि कैसे जो कमर्शियल मोटर व्हीकल्स की ट्रेनिंग है वो सरेआम खरीदो फरोख्त की जा रही है, बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस लोगों को मिल रहे हैं और ड्राइव टेस्ट सेंटर्स में धांधलीबाजी हो रही है। सो इन सारी चीज़ों को अब फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने थोड़ा सा करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन अनाउंस किए हैं, जिसके तहत पता चला है कि अगले साल अर्ली 2027 में स्टैंडर्डाइज क्लास ए एंट्री लेवल ट्रेनिंग करिकुलम लॉन्च किया जाएगा। ये एंट्री लेवल ट्रेनिंग वही है जिसको हम मेल्ट प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन फिलहाल वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, कोई कॉलेज किसी तरह से पढ़ाता है कोई किसी तरह से, लेकिन अगले साल की शुरुआत में ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ एक नए सब्जेक्ट इस करिकुलम में ऐड किए हैं, जिसमें फटीग मैनेजमेंट, नदरन रूरल और रिमोट एरिया में ड्राइविंग कैसे करनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस, और फाइनली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मुताबिक है वो ये है कि एक नया इंटेग्रिटी मैनेजर अपॉइंट किया है, जो कि इस सब गोरख धंधे को जो धांधलेबाजी फ्रॉड करप्शन चल रही थी ड्राइव टेस्ट सेंटर्स और सर्विस ओंटारियो और एमटीओ के जो भी तामझाम था उसको रोकने के लिए ये नई पोजीशन क्रिएट की गई है। लेट्स सी कि देर आए तो आगे ये सरकार, लेकिन क्या दुरुस्त आएगी ये आने वाला समय बताएगा
0: जी। आने वाला समय तो ये भी बताएगा कि ओंटारियो म्युनिसिपल इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा 26 के बाद। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे लगता है इसमें वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो है एक डिस्कशन ऑलवेज चलता है कि भाई। इससे पहले मैं क्विकली कॉलर को ले लूं उनका सवाल और फिर इमिग्रेशन अपडेट एज वेल एज ये म्युनिसिपल इलेक्शन का अपडेट भी आपसे लेते हैं। कॉलर आप ऑनर हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज।
2: हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है
0: जी, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए।
2: मेरा सवाल ये है कि अभी जो ये मॉर्गेज का जो है ना इंटरेस्ट रेट, यहाँ अमेरिका में तो ऊपर चला गया इंटरेस्ट रेट, तो अभी यहाँ वाला भी ऊपर जाने के प्रोग्राम में है, तो फिर वो मार्केट में जो अफोर्डेबिलिटी है लोगों की वो फिर और हैम्पर हो जाएगी, तो इस पर कोई गवर्नमेंट कुछ प्लान व्लान कर रही है या अभी भी ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था?
0: ठीक है जी, वैसे हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे थे, बट अगर मनन जी इसका जवाब देना चाहें तो मनन जी।
1: देखिए बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर सबकी निगाह रहती है कि उन्होंने किस तरह से जॉनसी ओवरनाइट लैंडिंग रेट है उसकी अनाउंसमेंट करनी है। पिछले तो 5-6 जॉनसी अनाउंसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि शायद इस साल का जो लास्ट अनाउंसमेंट होगी कपल ऑफ उसमें शायद फिलहाल टल जाए रेट इंक्रीज करना, लेकिन नए वर्ष के शुरुआत में पीपल आर एक्सपेक्टिंग दोज हु आर माइन्यूटली वॉचिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा फेरबदल इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी आपको पता है कि यूक्रेन रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो दूर नहीं हो रहा, ईरान का जो कन्फ्लिक्ट इस फरवरी मार्च में शुरू हुआ था वो भी खत्म होने के पास आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा, ट्रेड वॉर जो अमेरिका और कनाडा की लगी हुई है उसको भी कहीं राहत नहीं मिल रही। सो डेफिनेटली इकोनॉमी इज नॉट इन अ वेरी वेरी रोजी पिक्चर, हम नहीं दिखाना चाहते। अपना खर्चा अपना संतुलन खुद बनाकर रखें, सरकार ने तो जो करना है वो करेगी नहीं करेगी वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आप अपना डिसीजन जरूर बी मेक इट अ कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन
0: जी। दूसरी तरफ ओंटारियो म्युनिसिपल इलेक्शन जो है उसको लेकर भाई ब्यूगल बज गया है, सब बातें कर रहे हैं, और आप बताइए कि किस तरह से क्या दिख रहा है, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर रनिंग फॉर सिटी काउंसलर, काउंसलर रीजनल, जो भी मतलब अलग अलग पोजीशंस के लिए, दे आर नॉकिंग द डोर्स और प्रॉमिसेस दरवाजे पे आके ही शुरू हो जाते हैं कि भाई आप हमें ही वोट दीजिए, तो कैसे सिनारियो क्या लग रहा है मनन जी?
1: देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें जो डेमोक्रेसी का पर्व है त्योहार है इलेक्शंस को उस पैमाने से उस आईने से और उस लेंस से देखना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये डिसीजन मेकिंग इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो भी आपके चुने गए नुमाइंदे होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आपके ग्राउंड लेवल के इश्यूज को रिजोल्व करने में उम्मीद है कि सहायक होंगे, वो यू नो वो हेल्पफुल होंगे, लेकिन कई बार हम ऐसे कैंडिडेट्स चुन लेते हैं अंडर प्रेशर, अंडर यू नो प्रॉपर इन वेल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, या सोचते हैं कि चलो जी इनकम्बेंट है पिछले 8-10 सालों से 12 सालों से रिप्रेजेंट कर रहा है या कर रही है, इसी को मौका दें। लेकिन अगर आपने उसको डिटेल्ड अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, वेल इन्फॉर्म डिसीजन लें, तो अगर उस कैंडिडेट इनकम्बेंट से पिछले 8-12-4 सालों में अगर कुछ काम नहीं हुआ या अभी भी पेंडिंग इश्यूज हैं, तो हाउ कैन यू कीप ऑन यू नो ब्लाइंड फोल्डेडली एक ही कैंडिडेट को बार बार जिताने। सो हमारा पर्पस इस यू नो इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने का यही है कि सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज को इम्प्रूव करें। अगर आप वोट नहीं करने जाएंगे तो आपको कोई एक नैतिक हक नहीं रह जाता कंप्लेंट करने का। ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कैलेडन जैसे शहरों में अंडर 30% वोटिंग परसेंटेज होती है म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग, वेरी डिस्करेजिंग, एंड आई वुड से इट्स अ फेल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो कोशिश ये करें कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाकर वोट के हक को इस्तेमाल करें। जिस भी कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, वी आर नॉट पुटिंग नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपने खुद चुनना है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो आपके लिए एक सोल्यूशन फाइंडर हो, ना कि प्रॉब्लम मेकर बन जाए, ट्रबल मेकर बन जाए। और उसके लिए उसका बायोडाटा, उसका किरदार, उसका काम, उसकी एजुकेशन, उसके ग्राउंड इश्यूज के साथ समझ बूझ, उसकी अप्रोच, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी यू नो सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत बेसिक फैक्टर्स हैं

0: इमिग्रेशन जाने से पहले इमिग्रेशन की दुनिया में क्या एग्जैक्टली नया हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
1: बिल्कुल जी, 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद इस हफ्ते से फिर एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आने शुरू हो जाएंगे। पहला ड्रॉ तो आज पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का आ गया है। ऑलमोस्ट 733 एप्लीकेंट्स हैव रिसीव देयर गोल्डन ईमेल, आनी शुरू हो गई होगी। लेकिन अगले 2-3 दिनों में कौन कौन से ड्रॉज आएंगे वी कैन नॉट यू नो इमीडिएटली टेल अबाउट दैट। लेकिन ये जरूर है जो ट्रेंड आ रहा है, पिछले 2 हफ्ते पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ आया था, 519 सीआरएस स्कोर था कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में। इस हफ्ते भी एक सीसी का ड्रॉ आ सकता है, उसके साथ फ्रेंच कैटेगरी की दोबारा वापसी होगी या डॉक्टर्स की या स्टेम की या एजुकेशन की, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन जिस भी कैटेगरी में आपको इनविटेशन टू अप्लाई की ईमेल अगर आती है तो डेफिनेटली यू हैव क्रॉस्ड द फर्स्ट हर्डल। लेकिन जो सेकंड हर्डल है उसके लिए आप जरूर तैयार होकर अपनी फाइल को भेजें आईआरसीसी को, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर फ्यूचर इन कैनेडा। अगर आपको कोई प्रोफेशनल सलाह चाहिए, अपनी फाइल को रिव्यू करवाना है या यू वॉन्ट टू यूज प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ स्काईलिंग इमिग्रेशन, वी आर हेयर टू गाइड यू, help you professionally, legally and ethically. 416-451-0040 is the best number to reach us. या फिर skylakeimmigration.com के ऊपर जाकर भी आप formal appointment बना सकते हैं। जी
0: बिल्कुल। And Skylake Immigration, the number one company, जिसे मैं always number one कहता हूँ, honesty, integrity का दूसरा नाम। सही तरीके से आपके केस को फाइल किया जाता है, हर बारीकी पर मनन गुप्ता जी एंड द टीम की नज़र होती है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी गलती से बेवजह टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। 416-451-0040, 416-451-0040 नंबर है मनन गुप्ता जी और उनकी टीम का एट स्काईलेक इमिग्रेशन। मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच जी, नमस्कार।
0: थैंक यू सर। 416-451-0040 एंड होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी के दरवाजे खुल चुके हैं, 4284 विलेज सेंटर कोर्ट इन मिसागा, एंड ग्रैंड ओपनिंग फ्राइडे को थी। कंग्रेचुलेशंस टू देव सागर, रिद्धि, द इंटायर टीम। एंड इस बेस्ट टीम को ज्वाइन करने के लिए याद रखें, एक नहीं अनेक फायदे हैं आपके लिए। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस है, मैंने खुद देखा है जाके, क्या जबरदस्त ऑफिस बनाया है इन्होंने। लिमिटेड टाइम के लिए नो डेस्क फी फॉर रियल्टर्स, अनलिमिटेड सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको मिलेगी, दे विल क्रिएट योर ऑडियो वीडियोज जो भी होते हैं, बेस्ट स्प्लिट्स इन द मार्केट, एंड सारे का सारा एडमिन वर्क विल बी डन बाय द ब्रोकरेज, सो यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेलिंग होम्स। एंड ब्रोकरेज का नंबर नोट कर लीजिए, होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी, 647-859-2000, 647-859-2000। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब भी हमारे साथ होंगे बहुत जल्द, आगे चलकर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी होंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल किशोर कुमार, सुमित कुमार, विशाल की आवाज में बचना है हसीनों का टाइटल ट्रैक, रणबीर कपूर, द सुपरस्टार रणबीर कपूर आज हो गए 44 के।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइट सेल्स इवेंट का फायदा उठाए. सिर्फ 0% से फाइनेंसिंग और पाए $500 तक का अपग्रेड बोनस भी. ऑफर सिर्फ सितंबर 30 तक है. हम पिक करते हैं टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com, ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
2: Don Valley North Hyundai, doing
1: a proud member
2: your
1: of
2: way.
1: Wayne's Auto Group.
3: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
4: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया है अनाज मार. रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ. फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन. कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट.
5: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal, for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant.
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं. जहां मिलती है वो लग्जरी जो आप लेक्सस से एक्सपेक्ट करते हैं, गैस की कन्वीनियंस के साथ. लीज रेट सिर्फ 2.9% से विद $618 पर मंथ पे. आज ही डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com पर विजिट करें. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: The day I became my father. Friends, I never noticed how tired my father looked. He always came home late, smiled anyway, asked, "How was your day?" before talking about his own. He carried the weight of our family without asking for applause. Years passed. One evening, I looked in the mirror. The tired eyes, the silent worries, the long days. And that's when I realized I had become the man I never fully understood. Now I know, friends, my father was never just growing older. He was giving his strength to us, just one day at a time. Just one day at a time. Thank you, Dad. Thank you so much.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Welcome back, friends. एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफटाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है. प्लीज डोंट वॉक इन. 905-206-1008. इस सेगमेंट को ध्यान से सुने. बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है. मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी. जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है. देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए. हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो. देखें, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है. अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं. आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में. और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो. देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है. और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ. और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें. हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो और उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं.
1: बिल्कुल.
2: सेकंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते. ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है. और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है. और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट. और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट What you are. देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है. आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा. अब वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही. प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते.
1: Exactly.
2: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं. आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं. देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते. तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें, माइंड ब्लोइंग। अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए। तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें। यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमारा फोन नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
1: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है। और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा। फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम। 905-206-1008, 905-206-1008। मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 905-206-1008।
3: Toyota, get in and go event at Don Valley North Toyota. Corolla and Corolla Hatchback or GR Corolla ki huge selection mein se apni favorite Toyota choose kijiye aur apni trade-in par paye top dollar. Jaldi kijiye, wait mat kijiye. Aaj hi visit kijiye Don Valley North Toyota, Canada's number one volume Toyota dealership. DonValleyNorthToyota.com. Located hai 3300 Steeles Avenue, East Markham par. Don Valley North Toyota. A proud member of Vane's Auto Group.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 6473278111, 6473278111।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Wayne's Auto Group, Wayne's Auto Group, Canada. Visit waynesautogroup.com.
0: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी, 6478661086, 6478661086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से बातचीत करते हैं, उससे पहले क्विकली मैं गुरविंदर जी का नंबर दे दूं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस फॉर ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बेस्ट रेट्स के लिए, बेस्ट कवरेजेस के लिए आज ही कॉल करें। गेट अ फ्री कोट, रिन्यूअल्स कमिंग अप। कॉल 6473-3207, 6473-3307। गुरविंदर बामरा, ऑल स्टेट इंश्योरेंस। राज जी स्वागत है आपका।
2: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून। आज सनी जी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही बड़े बिल्डर्स हैं जो कि डिफरेंट साइट्स पर एब्सोल्युटली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, न्यू होम विद ओनली 6% डाउन। कैलेडोनिया में प्री कंस्ट्रक्शन टाउन और डिटैच होम फ्रॉम द हाई 400s, मूव इन रेडी टाउन और डिटैच होम्स फ्रॉम द हाई 500s। इसमें $10,000 के डेकोर डॉलर्स हैं, फ्री एसी, अप टू $60,000 क्रेडिट ऑन क्लोजिंग। साथ ही साथ वेलेंड में प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हाई 400s और मूव इन रेडी टाउन और डिटैच होम्स from the low 700s. इसी तरह थरोल्ड में और ब्रेस्लो में भी एंड ब्रैंटफोर्ड में ये फाइव डिफरेंट साइट्स है जहां पर प्री कंस्ट्रक्शन 500s में और मूव इन रेडी होम्स फ्रॉम द हाई टू मिड टू हाई 500s में अवेलेबल है, अप टू $94,000 के डिस्काउंट्स हैं। और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए अवेलेबल है। जो भी भाई बहन ब्रैंटफोर्ड, ब्रेस्लो, थरोल्ड, वेलेंड या कैलेडोनिया में अपने आप को फाइंड करते हैं कि आप यहां अपना रेजिडेंस बनाना चाहेंगे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए। एडवांटेज है इस वक्त फॉल की सेल विद $94,000 इन इंसेंटिव्स, और अपॉर्चुनिटी है आपके पास सिर्फ 6% के साथ अपना घर बाय करने की। हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लें डिटेल्स के लिए।
0: जी
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। एंड नंबर 6478661086, 6478661086 राज जी का नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू सर।
0: थैंक यू सर। एंड साथ ही साथ मैं आपको पॉल सैगल साहब का मैसेज भी दे दूं। Paul Sehgal get free smart security package worth $2,100 के equipments हैं. और याद रखिए कि ये बहुत ही जबरदस्त स्पेशल चल रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की तरफ से, पॉल जी की तरफ से. paulsecurity.com पर भी आप जा सकते हैं टू गेट विजिट द वेबसाइट, या 416-940-0624 पर कॉल भी कर सकते हैं. $60 का प्लान अब $50 में मिलेगा, 24 आवर की मॉनिटरिंग मिलेगी, पुलिस, फायर, इमरजेंसी, लैंडलाइन की जरूरत नहीं है, स्मार्ट डिवाइस के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से आप आर्म या डिसआर्म कर सकते हैं. स्पेशल प्रमोशन, नो एक्टिवेशन, नो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, 2 फ्री कलर व्यू नाइट विजन कैमरास, स्मोक कम हीट डिटेक्टर, पहले 3 महीने की सर्विसेज फ्री हैं, इंश्योरेंस डिस्काउंट सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टन कंडीशंस अप्लाई. आल्सो ऑफरिंग कलर व्यू कैमरा पैकेजेस जो कि $700 से शुरू हो रहे हैं, सेफ्टी फिल्म एंड बार्स बाय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सर्विंग द कम्युनिटी इन GTA सिंस 2009 विद मोर देन 20,000 सैटिस्फाइड कस्टमर्स. पॉल जी का नंबर 416-940-0624. एक बार फिर से गुरविंदर बामरा जी ऑल स्टेट इंश्योरेंस का नंबर दे दूं फॉर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट ऑटो इंश्योरेंस रेट्स, होम इंश्योरेंस रेट्स. आज ही कॉल करें 647-303-3207-647-303-3207. बेशरम फिल्म का गीत लाइनअप कर दिया है. एंड टुडे इज द 44th बर्थडे ऑफ रणबीर कपूर, सेलिब्रेटिंग इज 44 years of सक्सेसफुल करियर. भी उनका जबरदस्त रहा है 2007 से जब से करियर शुरू हुआ. सो There you go. एक प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल अभिजीत की आवाज में.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ।
1: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 स्पोर्ट्स सिर्फ 1.9% से या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे एंड हम बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: माजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 9057999400।
2: माजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: McQueen Dental Care, Dr. Rajgil, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। जहां मिलती है वो लग्जरी जो आप लेक्सस से एक्सपेक्ट करते हैं गैस की कन्वीनियंस के साथ। लीज रेट्स सिर्फ 2.9% से विथ $618 पर मंथ पे। आज ही डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com पर विजिट करें। A proud member of Wayne's Auto Group.
4: सुनो दोस्तों, माँ पापा के रहते कुछ बन जाना, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारी जीत पर इतराएगा कौन? कौन लगाएगा तुम्हें गले से? सबको तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनाएगा कौन? उन्हें इंतजार है हर उस जीत की मिठाई बांटने का, उन्हें इंतजार है हर उस जीत की मिठाई बांटने का। वो ही ना रहे तो खुशी के आंसू बहाएगा कौन? वो ही ना रहे तो खुशी के आंसू बहाएगा कौन? उनके भी कुछ ख्वाब थे जो तुम्हारे चलते उन्होंने कुर्बान किए, तो जी जान लगा दो दोस्त और कुछ करके दिखा दो, नहीं तो उनके अधूरे सपनों को अपना बनाएगा कौन? नहीं तो उनके अधूरे सपनों को अपना बनाएगा कौन?
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस। सुल्तान जी हमारे साथ हैं। आपने पहुंचना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM। टीवी अप्लायंस की लॉन्ड्री की सुल्तानिक डील्स लेकर सुल्तान जी हमारे साथ हैं। नंबर नोट कर लें, 9054502828। हर तरफ एक बात की चर्चा बार बार हो रही है, यार ये जो टैरिफ्स हैं, ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, अब क्या सिचुएशन बनने वाली है? हमें घर के लिए जो चीज़ें चाहिए, अप्लायंस चाहिए, लॉन्ड्री चाहिए, वो चाहिए, अब किस तरह से क्या प्राइसिंग होगी, क्या क्या इंक्रीज हुआ है, कैसे, हाउ वी सी एट ऑल दिस, उस पर रोशनी डालेंगे द वन एंड ओनली सुल्तान जी। सुल्तान जी स्वागत है आपका।
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: सुल्तान जी सबसे पहले अप्लायंस सेक्शन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ये टैरिफ्स जो लागू होने हैं, हो चुके हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह से आम कंज्यूमर को इसकी मार पड़ेगी?
6: जो नई प्राइस लिस्ट आई है जी हमारे पास सनी भाई, वो 25% होम अप्लायंसेस पे टैरिफ है स्टील पे, और उसमें 5% फ्रेट इंक्रीज हुआ है। टोटल प्राइस डिफरेंस आ रहा है 30%।
5: ओके,
6: सो एज ऑफ टुडे एग्जांपल देके चलता हूं कि अगर आप $1000 का फ्रिज सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो टैरिफ लगी प्राइस उसकी है $1300।
5: वाओ,
6: सो $300 यानी 30% इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑलरेडी हमारे पास आ रही हैं। अब आजकल जो भी ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं वो टैरिफ लगी प्राइसेस के ऑर्डर जा रहे हैं,
5: ठीक है जी।
6: लेकिन आज से जो वीक या दो वीक पहले हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए थे वो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी कस्टमर 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज लेना चाहते हैं जो कि टैरिफ लगी प्राइस 1300 है, आज भी उन्हें हम 899 का देंगे।
5: वाओ,
6: और जो भी कस्टमर फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर लेना चाहते हैं जो कि $2000 वाला है, टैरिफ लगी प्राइस उसकी $2600 है, आज भी हम 1799 का देंगे जी।
5: वाओ, क्या
6: और जो भी हमारे कस्टमर किचन बंडल लेना चाहते हैं, फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3-piece किचन बंडल, जो के टैरिफ लगी प्राइस जो है वो इसकी 3899 है, क्योंकि ये $5000 से डिस्काउंटेड प्राइस पे था 2999 का
5: जी।
6: लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे पांच या छह बंडल पैकेजेस अवेलेबल हैं, यानी छह फ्रिज होंगे, छह स्टोव होंगे, छह डिशवॉशर हैं, तो छह लकी कस्टमर, सिक्स लकी कस्टमर कैन गेट इट $29.99 में
5: जी।
6: तो वो $900 एक बंडल पैकेज पे टैरिफ लगी प्राइस को सेव कर सकते हैं सिर्फ 10% डिपॉजिट दे के, यानी $300-$400 डिपॉजिट दे के डील लॉक कर लें। जो भी हमारे बहन भाई इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं वो हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को, ताकि टैरिफ लगी प्राइसेस से बचा जा सके और अभी इन डील्स को लॉक किया जा सके। खास तौर पे टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर जो है वो $10.99 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों $10.99 में। अगर आपको चाहिए जी इस वक्त स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, 27 इंच वाइड और 76 इंच हाइट में आपका वॉशर ड्रायर स्टैक्ड एंड इंस्टॉल होगा सिर्फ $14.99 में, जबकि इसकी टैरिफ लगी प्राइस जो है वो $19.99 है।
5: वाओ,
6: लेकिन $14.99 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से लिया जा सकता है। हमारी वेबसाइट है जी brampton appliances.com और हमारा टिकटॉक अकाउंट है ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी एपीपी। अगर आप ब्रैम्पटन टीवी ऐप को फॉलो करेंगे आपका नाम लकी ड्रॉ में डाला जाएगा और फिर आप निंजा का जूसर विन कर सकते हैं। तो हमारे टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। brampton appliances.com हमारी वेबसाइट विजिट करें और खुद शोरूम में विजिट करने के लिए 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। brampton appliances.com हमारी वेबसाइट है जी। 905-450-2828 हमारा नंबर है। 905-450-2828
5: 405-450-2828 दोस्तों, अप्लायंस लॉन्ड्री में तो अब आपको पता चल गया है कि भाई 25% प्लस 5% का जो टैरिफ 30% की मार है उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि जो सारा सामान ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस के वेयरहाउस में एक हफ्ते पहले आ चुका है उसमें वो टैरिफ की बचत आपके आपको डिलीवर डायरेक्टली सुल्तान जी कर देंगे। सुल्तान जी, टीवी सेक्शन को लेकर घरों में आजकल ऐसा होता है छह कमरे छह टीवी चाहिए चाहिए ही चाहिए, अब उसमें तो टैरिफ का चक्कर पड़ेगा या उसमें भी आप हमारे पैसे
6: जी बचाएंगे? बिल्कुल, उसमें भी हमारे पास जो स्टॉक है जी उसका जरूर फायदा उठाया जा सकता है। मेरे पास इस वक्त 55 इंच टीवी गूगल टीवी फीचर, हमारे पास बिल्ट इन क्रोमकास्ट है ये गूगल फीचर्स के साथ है 55 इंच, सिर्फ $399 में चार या पांच पीस अवेलेबल है।
5: जो 55 भी इंच $399, ओ माय गॉड क्रेजी।
6: इसी तरह मेरे पास 75 इंच में कुछ एक टीवी 10 टीवी के करीब अवेलेबल हैं जो कि सैमसंग 75 इंच सिर्फ $799 में।
5: माय गॉड, आज तक मैंने 799 में 75 इंच का टीवी कभी नहीं सुना,
6: वो भी ब्रांडेड जी सैमसंग ब्रांड,
5: दैट सैमसंग
6: जी।
5: वाओ,
6: क्या और इसके बाद मेरे पास सोनी ब्रेविया मॉडल में सोनी ब्रेविया 3 अवेलेबल है 85 इंच में, जो के टैरिफ लगी प्राइस इसकी है जी $18.99, लेकिन आज $15.99 में कस्टमर ले सकते हैं सोनी ब्रेविया 3। अगर लेंगे तो सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा, अगर कस्टमर लेंगे सैमसंग तो उन्हें मिनी एलईडी मिलेगा 2026 का लेटेस्ट मॉडल
5: जी।
6: मिस ना करें, जो भी जितना भी स्टॉक अवेलेबल है विदाउट टैरिफ लगी प्राइस आपको अवेलेबल मिल सकता है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। और मेरे पास चंद एक पीस जो है 98 इंच सैमसंग भी अवेलेबल है जो कि $3,500 से सिर्फ $19.99 का मिलेगा, जबकि इसकी टैरिफ लगी प्राइस भी $27.99 है, लेकिन $19.99 में 98 इंच फ्री डिलीवर करवाएं। चाहे आपको टीवी लेना है तब भी फ्री डिलीवर होगा, सिक्स मंथ में आप पे कर सकते हैं। फ्रिज स्टोव डिशवॉशर चाहिए बेशक सिंगल सिंगल पीस या बंडल पैकेज तब भी फ्री डिलीवरी है, सिक्स मंथ में आप पे करेंगे। लॉन्ड्री में आपको टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर, स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर, कॉम्पैक्ट वॉशर एंड ड्रायर या फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर या वन पीस वॉशर विद बिल्ट इन ड्रायर चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी आपको सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे मिलेगा। विजिट करना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
5: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान,
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।

0: जोशी।
1: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों?
2: नया इलाका और नया घर,
1: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी।
4: Toyota Get In and Go Event at Don Valley North Toyota, Corolla and Corolla Hatchback और GR Corolla की huge selection में से अपनी favorite Toyota choose कीजिए और अपनी trade-in पर पाए top dollar। जल्दी कीजिए, wait मत कीजिए, आज ही visit कीजिए Don Valley North Toyota, Canada's number one volume Toyota dealership। Don Valley North Toyota.com, located है 3300 Steeles Avenue East Markham पर।
5: Don Valley North Toyota,
4: a proud member of Vane's Auto Group।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तो माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: खरा सौदा क्या होता है आमिर, बताइए मुझे आप, आज बताइए दीजिए।
1: खरा सौदा वो होता है जो अंदर से भी वही हो जो बाहर से हो।
0: अच्छा
1: कभी कभी ऐसा होता है ना, पैकिंग आपको कुछ और दिखाई देती है बाहर से, बड़ी रंगीन सी, बड़ी कलरफुल सी, बड़ी खूबसूरत सी, दिलकश सी, और अंदर से सामान बहुत बासी सा, बहुत पुराना सा, बहुत बोसीदा सा, बहुत पुराना सा।
0: अच्छा देखिए, उससे मुझे याद आया कि एक स्कॉलर ने कहा है, कुछ लिखा है
1: कौन सा
0: कि
1: स्कॉलर है?
0: जी मैं
1: मेरा नाम तो नहीं है इसमें,
0: नहीं, आप तो बहुत महान किताबें लिखते हैं, आपका काम
1: छोटे
0: मतलब
1: मोटे कोर्स
0: छोटे
1: नहीं।
0: मोटे जो स्कॉलर्स हैं, जो जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो
1: अच्छा,
0: उन्होंने कहा है कि पिज्जा ऑलवेज कंफ्यूजेस मी,
1: ओ अच्छा,
0: जैसे अभी आपने बताया ना
1: मुफ्त का पिज्जा या खरीदा हुआ पिज्जा?
0: खरीदा हुआ
1: अच्छा, खरीदा हुआ।
0: पिज्जा, क्योंकि मुफ्त है पिज्जे पे तो आदमी जज करता ही नहीं है ना, जब हमारा कुछ लगा ही नहीं, तो जैसा भी ये बोनस
1: बस बोनस
0: है
1: है।
0: ना। तो
1: हाँ
0: पिज्जा ऑलवेज कंफ्यूजेस मी,
1: अच्छा,
0: वो आता तो है स्क्वायर बॉक्स में,
1: ओ
0: आप उसको खोलते हैं तो राउंड निकलता है, और जब
1: वाह,
0: आप उसको उसकी पीस निकालते हैं खाने के लिए
1: खाने
0: तो
1: के
0: वो
1: लिए
0: ट्रायंगल होता है।
1: ट्रायंगल
0: अब
1: होता
0: लोग भी तो ऐसे ही है
1: है।
0: ना,
1: ओ यस, क्या मिसाल दिया आपने,
0: दिखते कुछ और हैं,
1: वाह
0: होते कुछ और हैं,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: एक्ट तो बिल्कुल ही अलग तरीके से करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारी दुआ और ये तमन्ना ये है अपने सुनने वालों के लिए कि अच्छे लोगों से इनका पाला पड़े। देखिए, आपको बहुत से अच्छे लोग मिले, एक गलत इंसान इंसान को मिल जाए ना जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: वो क्या
0: जिसने,
1: कहते हैं साला, एक मच्छर।
0: आई गॉट यू। प्लीज मंडे के दिन आप बिल्कुल जहमत ना करें एलेबोरेट करने की, मुझे पता है। तो जैसे हम लोग फ्राइडे को बात कर रहे थे ना, कि एक एक एक नेगेटिव कमेंट को कवर अप करने के लिए आपको 7 पॉजिटिव कमेंट करने होते हैं,
1: जी
0: ऐसे एक
1: बिल्कुल,
0: साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है।
1: सही कह रही
0: लेकिन हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ना,
1: हैं।
0: वो इतने अच्छी हमारे लिए एक ऑफर लेकर आए
1: अरे
0: हैं, और
1: वाह,
0: उनका एक हमने प्रोमो अपने पॉडकास्ट के टाइम में लगाया था, सो मेनी पीपल लाइक्ड
1: वॉच्ड इट,
0: इट,
1: यस,
0: वॉच्ड इट, लव्ड इट, क्योंकि वो है ही ऐसा, आजकल की इकोनॉमी के हिसाब से आपकी बात करता हुआ, आपके बारे में सोचता हुआ।
1: बिल्कुल। अगर आप दफ्तर से घर जा रहे हैं तो आप ये यकीन कर लीजिए कि अब आपको अपनी कॉस्ट खुद बेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अगर दफ्तर से, मान लीजिए, ब्रैम्पटन से डाउनटाउन टोरंटो जा रहे हैं या डाउनटाउन टोरंटो से स्कारब्रो एजेक्स पिकरिंग कहीं जा रहे हैं, तो एक ऐसी ऐप आ रही है मार्केट में, एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि आपका गाड़ी का खर्चा भी निकल जाएगा और जेब में कुछ आपको बच भी जाएगा। राइड आप देंगे, लेकिन ये राइड मार्केट में मौजूद तमाम राइड से डिफरेंट है, यूनिक है। ये कैसे काम करती है और आप टेरिटरी राइड्स कैसे ले सकते हैं, इन पे बात होगी। हमारे से शामिल हैं अनवर वारसी, वेलकम करते हैं सर आप।
2: हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपके बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स फॉर मी हैविंग मी हियर। एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं आपको बता दूं ये यूनिक टाइप ऑफ राइड है। अक्सर इसको लोग किसी दूसरी राइड से शाबाश देते हैं कि भाई ये उसी टाइप की है, हम कहते हैं नहीं, उस टाइप की नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ही जाती है।
1: बिल्कुल
2: पहली चीज
1: ठीक,
2: बता दें, दूसरी चीज ये बता दें कि इसमें अगर आप किसी को राइड दे रहे हो तो ये इस बात का डर नहीं होता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा यार, चार पांच लोगों को इधर उधर छोड़ना है ना, तो चार पांच लोग नहीं होते। दूसरा ये होता है प्राइवेसी होती है आपकी अपनी, मतलब एक फैमिली के तीन चार बंदे बैठ सकते हैं आमिर भाई, लेकिन
1: बिल्कुल सही,
2: एक जगह से, ठीक है, लेकिन
1: बिल्कुल
2: आप ए
1: सही,
2: पॉइंट बी पॉइंट, ताकि जो बंदा छोड़ रहा है उसका टाइम जाया ना हो,
1: बिल्कुल
2: ठीक है।
1: ठीक,
2: दूसरी चीज
1: बिल्कुल
2: जो
1: सही,
2: रहती है, जो राइड आपको दिखाई देती है वो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज वाली ही नजर आएगी, मतलब आपके इलाके के करीबी होगी। ऐसा नहीं
1: बिल्कुल
2: है कि
1: सही,
2: आपने 15-20 किलोमीटर जैसे कि जाना पड़ता है और वहां से उठाना है, ऐसा वाला मामला भी नहीं।
1: बिल्कुल सही। दूसरी चीज मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि किसी के पास अगर 15-20-25 हजार डॉलर है तो वो एक कारोबार शुरू कर सकता है, डिफरेंट सिटीज या टेरिटरीज के राइट्स उसको मिल सकते हैं, हाउ डज इट वर्क?
2: बिल्कुल सही फरमाया आपने आमिर भाई। इसमें ऐसा होता है कि आपने जैसे एक सिटी की राइट्स ले लिए और आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी है, 10-15 हजार डॉलर ही एग्जाम्पल है ना, और उससे भी अगर कम है तो फिर आप टाउन भी ले सकते हैं। हमारे पास
1: अरे
2: 7,500
1: वाह,
2: में टाउन भी अवेलेबल है,
1: वेरी नाइस, बहुत अच्छा। किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपसे, क्या कोई नंबर है आपके पास?
2: जी आप 647-949-9900 जो है ये नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज लीव कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं बताऊँ, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम अभी तक 6 सिटी बेच चुके हैं और ये महीने के आने वाले महीने के मिड में हम इसको ऑफिशियली आपको दिखेंगी, राइडें चालू हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ ड्राइवर और फ्रेंचाइजी ही जो है ऑन बोर्ड ले रहे हैं, राइडर्स जो है नेक्स्ट मंथ से 15 तारीख से या 20 तारीख से ऑन बोर्ड हो जाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन मेरे पास लाइसेंस तो है, गाड़ी नहीं है, और अगर गाड़ी है तो मुझे पता नहीं है कि करना क्या है, तो जरा सा गाइड कर दीजिए हाउ टू रजिस्टर आवर सेल्फ एज अ ड्राइवर और एज अ फ्रेंचाइजी।
2: तो दो तरीके हैं इसमें, आप पहले जाके जो है हमारी वेबसाइट है cashride.ca cashride.ca इस तरह से वेबसाइट है, उस पर जाएं और वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, फ्रेंचाइजी का फॉर्म है। लेकिन अगर आपको अगर एज अ ड्राइवर बनना है और जैसे आपने कहा गाड़ी नहीं है, तो हम उसको डीलर से गाड़ी भी दिलाते हैं और उसके जो अखराजात होते हैं, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, उसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह वाह, कमाल की बात है। आम के आम, गुठलियों के दाम, गाड़ी भी मिल गई, रोजगार भी मिल गया, काम भी हो गया, किस्त का इंतजाम भी हो गया, रोजगार का भी इंतजाम हो गया। ये तो क्या खूबसूरत आइडिया है, इट्स रादर अ कम्युनिटी सर्विस। ये नंबर मिलाएं आप और वारसी साहब से बात एक बार जरूर करें, ये बड़ा एक कमाल का आइडिया लाए हैं। 647-949-9900 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 647-949-9900। कैश राइड टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको पॉडकास्ट भी मिलेगा जिसमें डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है वारसी साहब की शिवानी के साथ, वो भी जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वारसी साहब आपके टाइम।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो मोहताज नहीं होती दुनिया में आने की, फिजिकल प्रेजेंस की, वो जब आती हैं और जब चली जाती हैं। वैसे होता है ना कि इंसान जब चला जाता है तो थोड़ी देर के बाद उसकी यादें भी फेड हो जाती हैं, हम थोड़ा उनके बारे में बातचीत भी कम कर देते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे हम अगर हम सिनेमा की हस्ती की बात करें, सिंगिंग दुनिया की बात करें, हमारे भारत की, हमारे पाकिस्तान की, वो अभी भी जब उनका गाना बजता है तो हमारे एकदम गूज बम्स हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने बैठ के गा रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी लता मंगेशकर जी। और लता जी भारत रत्न से सम्मानित हुई थी, हालांकि जितने भी अवार्ड्स हैं वो खुद पर नाज करते हैं कि उनसे जुड़े हुए
1: जी, बिल्कुल।
0: इस लेवल पर आकर 28 सितंबर 1929 में इंदौर भारत में बॉर्न हुई वो, और सब उनके बारे में जानते हैं, कितने ही गाने गाए, कितने ही सिंगर्स के साथ उन्होंने परफॉर्म किया हर जगह पर। अगर हम स्वर कोकिला की बात करें, मेलेडी क्वीन की बात करें, और कोयल जैसा उनका गला कहा जाता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, वैसे आज हम फॉर्मेलिटी के तौर पे याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है,
1: बर्थडे है बिल्कुल।
0: लेकिन आज भी कोई ऐसा रेडियो स्टेशन नहीं है आमिर जहां उनके गाने रोज किसी ना किसी फॉर्म में ना
1: बजते हैं। सही कह रही हैं,
0: तो उन्हीं का गाया हुआ ऐसी जो शख्सियत है उनके लिए तो समझ भी नहीं आता कौन सा गाना प्ले करना, लेकिन ये उनकी एक रेलेवेंट सा गाना मुझे लगा, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
1: बहुत खूबसूरत गीत है और मेरे पसंदीदा गीतों में से एक गीत है ये, बहुत खूबसूरत चुनाव है आपका।
0: कहते ना आवाज थम गई पर तराने आज भी जिंदा है,
1: आज भी जिंदा है।
0: लता जी आप नहीं मगर आपके फसाने आज भी
1: जिंदा है। वाह वाह वाह, खूबसूरत आवाज और बहुत बेहतरीन बाकमाल चुनाव है, रहे ना रहे।
3: लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पे करम।

0: रहे ना रहे हम महका करेंगे, आप ये गाना एंजॉय कर रही थी और मैं आमिर की आवाज में स्टूडियो में एंजॉय कर रही थी, ये थ्रू आउट वो गाना गा रहे थे और बहुत खूबसूरत गा रहे थे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी वो ऑन एयर गाए आपके लिए गाना।
1: देखिए, गाना मैं सिर्फ अपने लिए गाता हूं,
0: अच्छा
1: क्योंकि जितने गाने के मधुर और खूबसूरत बोल हैं, जितनी खूबसूरत शायरी है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज दूसरों के लिए उस शायरी के साथ इंसाफ कर सकती है। मैं खुद तो कोई अजाब झेल सकता हूं अपनी आवाज में, दूसरों को मजबूर नहीं कर सकता इसके
0: आप जिन उस्ताद के पास गए उन उस वो जो उस्ताद थे लगता है आपके बहुत बड़े फैन थे वो, नहीं तो कोई उस्ताद ये नहीं कहता कि आप अपनी शायरी आप अपने गाने अपने तक ही रखें, कहते कि ये जो हुनर है ये औरों में बांटें। तो
1: देखिए, गुनगुनाना खुशी की अलामत है। जब कोई गुनगुना रहा होता है, इसका मतलब है कि ही और शी इज हैप्पी।
0: क्या बात है, दैट्स व्हाट
1: तो
0: मैटर्स।
1: या दैट्स व्हाट मैटर्स। गाना गाना बहुत दूर की बात है। आज के दौर में तो गुनगुना ही लें आप खुशी से, तो
0: बहुत
1: बहुत
0: बड़ी,
1: बड़ी
0: और
1: बात
0: कहते हैं ना कि समटाइम्स इट्स नॉट द सॉन्ग दैट मेक्स यू इमोशनल
1: है।
0: और हैप्पी, इट्स द पीपल एंड थिंग्स दैट कम इन टू योर माइंड व्हेन यू हियर इट और व्हेन यू सिंग इट, है ना।
1: और अगर बहुत से लोग एक ही वक्त में आ जाएं तो उसका क्या हाल है?
0: नहीं वो एक्सेप्शन केस है जो आप ही के केस में हो सकता है, हमारे नॉर्मल लोगों के केस में एक वक्त में एक इंसान आता है। होता है ना कभी हम कोई गाना हमें अच्छा लगता है, वो गाना हमने किसी को गाते हुए लाइव देखा होता है,
1: जी
0: अपने
1: बिल्कुल।
0: पसंदीदा सिंगर
1: अरे
0: के कॉन्सर्ट अटेंड किया होता है,
1: हाँ
0: या कभी हम किसी खास इंसान के साथ, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई और खास इंसान, उसके साथ हम कहीं मूवी देखने जाते हैं या कभी पिकनिक पे जाते हैं और उस वक्त बैकग्राउंड में वो गाना बज रहा होता है, ड्राइव पे जा रहे होते हैं, तो वो याद वो गाना जो है वो हमें उस सिचुएशन में ले जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: और लेकिन अगर आपकी सिचुएशन कोई भी है, लेकिन अगर आपको फाइनेंसेस में अगर अच्छे रखना है अपने, तो हमारे मेहमान की बातचीत हमें सुननी पड़ेगी
1: जी
0: डेफिनेटली।
1: बिल्कुल। सिचुएशन जो भी हो, पोजीशन जो भी हो, सूरत हाल जो भी हो, मसला जो भी हो, ये सब हल होगा, क्योंकि सारे मसले पैसे से जुड़े हुए हैं। पैसा नहीं होगा तो जिंदगी का निजाम रुक जाता है, उधर तातुल का शिकार हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको ये बताएंगे कि एक दिन के अंदर 500 से 700 डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ये नहीं, ये
0: कैसे
1: कनेडियन डॉलर
0: कमाए,
1: की बात नहीं हो रही, ये कैसे बनाने हैं, ये मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है, आप पैसा कैसे बनाएंगे, ये बताएंगे जेम्स लूक। वेलकम करते हैं जरा।
2: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप दोनों की बातें सुन के बड़ा दिल खुश होता है, अच्छी
0: थैंक
2: बातें
0: यू सो
2: करते हैं,
0: मच,
1: बहुत बहुत
0: हमें
1: शुक्रिया
0: थैंक यू सो
1: जी।
0: मच।
2: हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। आप
1: बिल्कुल
2: मौसीकी
1: सही,
2: की बात कर रहे थे, मौसीकी जो है वो रूह की गजा है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: और अगर
1: बिल्कुल
2: आप
1: सही।
2: खुदा के खुदा पे यकीन रखते हैं तो खुदा को मौसीकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है,
1: वाह क्या
2: इसीलिए
1: बात
2: वो
1: है,
2: रूह की गजा है।
1: गजा है।
2: आप
1: मैं
2: देख
1: आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो रूह की गजा तो है, वो तो जाहिर है, खूबसूरत शायरी हो,
2: हाँ
1: अच्छा म्यूजिक हो, तो
2: जी
1: इंसान की रूह की प्यास बुझ जाती है, लेकिन जिस्म की भी कोई भूख है, कोई प्यास है, और वो पैसे के बगैर नहीं बुझती, तो ये
2: वो
1: पैसा
2: बिल्कुल
1: कैसे
2: सही कहा।
1: बनाना है?
2: ये देखें ये पैसा बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन
1: जी
2: उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको
1: जी
2: ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ी सी अपना टाइम इन्वेस्ट करें मेरे साथ, और वो भी
1: जी
2: बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा आपने मुझे देना है मंडे टू फ्राइडे। ये
1: बिल्कुल
2: इसको
1: सही
2: बोलते हैं फ्यूचर्स, और
1: जी
2: इसमें
1: ठीक
2: आपको मैं एक स्पेशल न्यूज आज के रोज में ये दूंगा कि
1: जी
2: इस वक्त हमने जो ट्रेनिंग फी है वो बड़ी डिस्काउंट कर दी है,
1: बिल्कुल
2: राइट।
1: सही जी
2: सो अगर आप मुझसे फोन करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो
1: बिल्कुल
2: आप
1: सही
2: बड़ी आसानी से, ये ट्रेनिंग जो है ये मंडे टू फ्राइडे चलती है, 1 घंटा आपने मुझे जूम पे देना है, कहीं आना नहीं
1: सही
2: है,
1: है,
2: कहीं जाना नहीं
1: बिल्कुल
2: है,
1: ठीक।
2: और उसके साथ 3-4 हफ्ते में आप जो है वो मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो पैसा बनाएंगे। हाँ
1: बनाएंगे बिल्कुल सही,
2: हाँ
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल।
1: ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि ये कोर्स किसके लिए है और कितनी देर तक के लिए करना पड़ता है जी?
2: सब इंसानों के लिए ये कोर्स है,
1: बिल्कुल
2: उसमें
1: सही
2: उसमें उसमें आप देखें हर कैटेगरी आ जाती है, कोई इसमें कोई ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने कंप्यूटर को देखना है, उस पर आपने क्लिक करना है, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। मेरे पास बहुत सारे जो हाउसवाइफ्स हैं वो ट्रेन होके गई हैं, सीनियर्स ट्रेन होके गए हैं, काम करने वाले ट्रेन होके गए हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आज के ज़माने में। आपने खुद कहा था कि आज के ज़माने में गुनगुनाना जो है वो ही काफ़ी है।
0: जी बिल्कुल सही है आप जेम्स जी, बिल्कुल सही आपने बात कहा कि गुनगुनाना ही काफी है, वही हमें और हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसमें पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। और अभी आपने जो बात की कि बड़ी आसानी के साथ घर में बैठ के आप यू नो यूएस डॉलर में अर्न कर सकते हैं, चाहे हमारी बहनें हों, लेडीज हों जो बच्चों के चलते बाहर नहीं जा सकती, चाहे वो ऐसे बुजुर्ग हों या फिर कोई भी कन्वेंस की प्रॉब्लम है आजकल, या फिर किसी भी वजह से घर में होम बाउंड है तो कैसे ये कमा सकते हैं, आपने बताया। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि इसके क्या कोई सेट टाइमिंग्स हैं, या उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आप दे रहे हैं कि इस विंडो के दरमियान आप जो आपके पास टाइम है उसमें आप कर सकते हैं?
2: देखिए, इसके टाइमिंग्स जो है ना वो बेस्ट टाइमिंग्स हैं, 9:30 से 4 बजे तक जो है वो मार्केट्स बहुत अच्छी चल रही होती हैं, जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो चल रही होती हैं, S&P है, NASDAQ है, Russell 2000 है, इस तरह से हंड्रेड ऑफ मार्केट्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं, उनको इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, और उसके लिए यू नो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इंटरनेट से पढ़ के शुरू हो जाते हैं, आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, मुझसे लें, किसी और से लें, और भी लोग सिखा रहे हैं, तो किसी से आप ट्रेनिंग लें, पर आप खुद ना करें, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आप पैसे लूज करेंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्रॉपरली ट्रेन हो, देन ओनली यू कैन मेक मनी।
1: बिल्कुल सही, तो मुझे फोन पैसा करें। आप बना सकते हैं, फोन इस नंबर पर करेंगे, आप यही नंबर मिलाएंगे 416-454-2581। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 416-454-2581। 500 to 700 यूएस डॉलर दिन का बन सकता है, 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, जिंदगी भर का स्किल ले सकते हैं। 416-454-2581। बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स जी आपके टाइम के लिए।
2: और मैं ये कहूंगा आखिरी बात के इस डिस्काउंट का फायदा लें, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और फिर यू नो चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी, तो बिल्कुल सही जो है ये डिस्काउंट इसीलिए दिया गया है कि आप जल्दी से रजिस्टर करें ताकि आप पैसे बना सकें।
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स, थैंक यू वेरी मच,
2: थैंक यू सो मच, ओके बाय।
0: थैंक यू जी, बाय बाय। आमिर, बहुत खूबसूरत सी एक गजल है लिखी हुई साहिर लुधियानवी साहब की, और जो गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, साजन फिल्म का गाना है, 2 वर्जन्स में इसको गाया हुआ है, तो यहाँ फीमेल वर्जन का गाया हुआ गाना प्ले कर रहे हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कहते हैं, ये हुस्न तेरा ये इश्क मेरा रंगीन तो है बदनाम सही, मुझ पर तो कई इल्जाम लगे, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही, इस रात की निखरी रंगत को कुछ और निखर जाने दे जरा, जुल्फों को बिखर जाने दे जरा, नजरों को बहक जाने दे जरा, कुछ देर की ही तस्कीन सही, कुछ देर का ही आराम सही, ये हुस्न तेरा ये इश्क मेरा रंगीन तो है बदनाम सही, जज्बात की कलियां चुनना है और प्यार का तोहफा देना है, लोगों की निगाहें कुछ भी कहें, लोगों से हमें क्या लेना है, ये खास सा ताल्लुक आपस का लोगों की नजर में आम सही,
3: वाह, ये हुस्न तेरा ये इश्क मेरा, बहुत अच्छा।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। 6473278111, 6473278111।
1: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
4: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
1: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
4: 90% पास रेट।
1: कॉल नाउ 416-743-9222,
4: 416-743-9222।
1: और विजिट allsaintsuniversity.org। ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
5: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000, 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक, एशियन कनेक्शंस।
1: साहब आप सुन रहे हैं लवी डवे शो, आपका हमारा साथ रहता है 2 से 3 बजे के दरमियान मंडे टू फ्राइडे, और इस दौरान आपके साथ बातचीत रहती है, खूबसूरत से गीतों का साथ रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट के हमारे साथ शिवानी होती हैं, और शिवानी की बातों में किसी 200 साल पुरानी रूह की बातों का अक्स नुमाया दिखाई देता है। इतनी सयानी बातें करती हैं कि अगर आप 2-3 घंटे इनको सुन लें तो इंसान अपने आप को 90-95 साल का महसूस करने लगता है।
6: देखिए बात ऐसी है कि दो तरीके होते हैं इंसान अपनी उम्र बताना चाहते हैं। या तो सीधे सीधे बता दे कि मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे साथ की जो को होस्ट है वो बहुत उम्र दराज है, या फिर इंसान कहता है अपनी नहीं बताता, दूसरे को इतनी ज्यादा उम्र दराज बता देता है कि लोग सोचते हैं कि ये बेचारे बहुत छोटे हैं।
1: देखिए मेरी उम्र मैं आज बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ, ऑफिशियल है, 62 का मैं हो गया हूँ और 63rd यानी 63वां अगले साल शुरू हो जाए, ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ, लिख लें, नोट कर लें, दर्ज कर लें, पर्ची पर लिख के साइन करके उसको जला के पैक,
7: इसको एहसान के तौर पर ले लें।
6: देखिए जिंदगी में जो आपने ये आज बात की है, इससे किसी ने कहा है कि जिंदगी तेरे नखरों से तो बेहतर स्कूल की किताबें थी,
1: वाह,
6: देर से ही सही समझ में तो आती
1: थी, वाह
6: आपका।
1: देखिए नहीं, इसीलिए मैं आपको इतना सयाना कहता
6: हूँ, जिंदगी की तरह है जो उसी दिन बस समझ में आती है।
1: अच्छा, जिंदगी की बातें समझ आए ना आए, लेकिन आईने की जुबान इंसान को खूब समझ आती है
6: जी।
1: मैं जब अपने बालों की तरफ देखता हूं आईने के सामने जाके, तो 63 की बजाय मुझे लगता है मैं 83 साल का हो गया हूँ, क्योंकि बहुत कम चीजें बाकी बची हैं मेरे सर के ऊपर।
6: इससे मुझे एक बात याद आया, जब मैं छोटी थी ना तो لوگ جب اکثر کیا کرتے ہیں جب ہم تیار ہو کے جاتے ہیں نا کہیں پہ, تو ہم آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں, جسے تھوڑے گھٹتی بڑھتی ہو جائے وہ ٹھیک ٹھاک کر لے. میں ہمیشہ واپس آ کے دیکھتی تھی شیشے کی طرف, تو میری دوست کہتی تھی کہ تم لوگ جاتے وقت دیکھتی ہو, تم آنے کے وقت کیا دیکھتی ہو. میں نے کہا میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں وہاں ایک گھنٹہ رہی وہاں کیسی لگی.
8: جسے اگلی
6: ہمیشہ آنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ آپ وہاں جو آپ دکھے تھے وہ آپ کلاؤن لگ رہے تھے کہ ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے, جسے اگلی بار کے لیے آپ بہتر. جانے کے ٹائم نہیں, آنے کے ٹائم.
8: میں نے بھی ایسا ہی کیا. ایک بار کسی نے مجھے کسی کانسرٹ چھوٹی سی محفل پہ انوائٹ کر لیا, تو مجھے گانا گانے کا موقع ملا. تو وہاں پہ لوگوں نے کچھ برسات کی مجھ پہ, تو میں نے واپس آ کے دیکھا کہ میرا کیا حال ہوا. زیادہ برا نہیں ہوا تھا.
6: 62 سال کی عمر میں یہ تو لائف میں ایکسپیرئنس ہو ہی جاتا ہے.
8: ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں, جب آپ آئینے کے سامنے جائیں اور آپ کو لگے کہ بالوں کا یا تو مکمل صفایا ہو گیا ہے یا پھر بہت کم بال باقی بچے ہیں, وجہ جو کوئی بھی ہو, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کے بال واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے. شیوانی, لوگ ہزاروں ڈالر لگاتے ہیں, 10, 12, 15, 20 ہزار ڈالر لگاتے ہیں, بیک ہوم جاتے ہیں, یہاں سے چھٹی کرتے ہیں, وہاں پہ پلانٹیشن کراتے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سب تردد کرنے سے پہلے ایک بار بات کیجئے ظفر ملک صاحب سے, جن کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی سی بوتل ہے لیکن کام بہت بڑے دکھاتی ہے, آپ کے بال واپس لاتی ہے. ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں ملک صاحب.
9: جی, آپ کے اتنے تعارف کا میں بہت شکر گزار ہوں. شوانی جی نے بڑی اچھی بات کی کہ میں واپس آ کر دیکھتی ہوں کہ میں کیسی لگتی تھی. ٹھیک ہے,
6: ٹھیک
9: ہے. اسی لیے میں اس لائن پر آ گیا ان سے سیکھ کر کہ تیل لگا کر اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کو کیا فرق پڑ چکا ہے. آپ اس سے پہلے مت دیکھیں کہ میں گنجا ہو رہا ہوں یا میرے بال اسکن نظر آ رہی ہے لوگوں میں, اپنی سہیلیوں میں کیسے شکل دکھاؤں, کبھی بال ادھر سے ادھر کرتی کبھی ادھر کرتی ہیں اپنی اسکن کو چھپانے کے لیے,
8: جو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں ان کو ادھر ادھر کرتی ہیں.
9: وہ نہ کریں, آپ پہلے آئل کو استعمال کریں اور ایک ہفتے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسی لگتی ہیں. بات تو یہ ہے. اچھا, اب لڑائی ہو گئی کسی کی, کسی اور لڑکی کے ساتھ تھی, تو اس نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ تمہارا اس سے افیئر ہے کہ نہیں ہے. اس نے صرف اس سے پوچھا وہ دکھتی کیسی ہے. کیسا؟
8: بہت اچھا, بہت اچھا.
9: یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کا تو پوری ہر چیز جا رہی ہے لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں. اس کو صرف یہ تھا کہ تم جس کے ساتھ انوالو ہو رہے وہ دکھتی کیسی ہے, کہیں میرے دکھنے میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی.
8: بہت خوب.
9: تو بھائی آپ کے دکھنے میں کمی نہ آئے, آپ فریش ہیئر ٹونک کو استعمال کریں, آپ کے بالوں کو گرنے سے روکے گا, آپ کو واپس اگتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. 70% ہماری ریپیٹڈ سیل ہے. اب آپ بتائیں میں اس پر اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ریڈیو پر آ کر اتنا بتانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا. او بھائی 21 برس سے بنا رہے ہیں کینیڈا میں بنا کر آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ, یعنی کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ فری شپنگ دے رہے ہیں. آپ جہاں بھی کینیڈا میں رہتے ہیں ہم آپ کو فری آپ کے گھر پہ $60 میں ایک بوٹل پہنچاتے ہیں. ایک آدمی کا اس میں علاج ہو جاتا ہے. لگائیں ہزاروں ڈالر, کبھی 60 بھی لگا کے دیکھو, آپ کا بھی چھکا لگ جائے.
8: ارے واہ واہ.
6: اور شپنگ کی چارجز بھی آپ
9: نہیں لیتے؟ نہیں, ہم نہیں لیتے. فری رکھا
6: اراؤنڈ کینیڈا.
9: ابھی انہوں نے جیسے مانگ لیا, جو ریڈیو والوں کو عادت ہے کوئی نہ کوئی بونس بیچ میں اناؤنس کر دیتے ہیں. اس سے پیشتر کہ یہ کہیں, میں پہلے کہہ دیتا ہوں, 2 بوٹلز خریدنے پر آپ کو ایک شیمپو ہم فری دیں گے جو پیور کیمیکل سے فری ہے, جو پیور ہربل ہے, جو آرگینک پروڈکٹ ہے اور نیچر کے ساتھ ہے, اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. جن کے بال شیمپو کی وجہ سے جاتے ہیں وہ ہمارا شیمپو استعمال کریں گے تو ان کا اس میں بھی علاج ہو جائے گا.
8: اور نمبر یہ ملائیں گے آپ ابھی کے ابھی, ملائیے ظفر صاحب اور ان کی ٹیم یہاں پر موجود آپ سے بات کرنے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں 2 شیشیاں آپ خریدیں گے, 2 بوتلیں آپ خریدیں گے تو ایک آرگینک شیمپو آپ کو بالکل مفت میں ملے گا. اگر آپ چاہیں تو وہ مجھے بھی گفٹ کر سکتے ہیں بعد میں, جو کہ مفت کا ہی ہوگا. یہ نمبر ہے, یہ نمبر ابھی ملائیے, 647-521-5159. नंबर दोबारा बता रहे हैं, जफर मलिक साहब, इस वक्त एक पूरा थैला इनके पास शिष्यों से भरा हुआ, और मुझे लगता है आज अगर आप इनको फोन करेंगे तो ये इतने जेनरस और सखी आदमी है कि दो बोतलें देंगे, साथ में एक शैंपू देंगे ऑर्गेनिक किस्म का, और क्या देंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये नंबर आप जरूर मिलाइए, 6 4 7 5 2 1 5 1 5 9।
6: जी जफर साहब, ये बालों के बाद ठीक नीचे जो इंसान का जो चेहरा होता है ना, वो भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इंसान फेस वैल्यू पे जाता है, राइट?
9: बिल्कुल ठीक।
6: सबसे पहले आप इंसान का चेहरा जो है, सबसे पहले आप उसको चेहरे को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं।
9: बिल्कुल सही है।
6: अभी आपने कहा कि वो दिखने में कैसा लगता था या लगती थी, जैसा आपने बताया, तो ये क्वेश्चन ही पूछने की नौबत ना आए, वो इतना खूबसूरत लगे।
9: क्या बात है, वाह वाह।
6: आप जरा क्रीम भी बता दीजिए, और उसमें भी हमें हमारे लिस्टर्स को, स्पेशली आमिर को, डील की जरूरत तो पड़ेगी।
9: मैं आज करता हूँ, वो तो बात की बात है, पहले ये सुन ले, हम स्किन का और बालों का टोटल इलाज करते हैं। आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, एक्नी है, रिंकल्स पड़ गए हैं, बिफोर एज आप एजिंग आपको नजर आती है, आपको एंटी एजिंग क्रीम दे सकते हैं, आपको
8: तो मुझे बहुत जरूरत है।
9: जी जी जी, एंटी एजिंग है हमारे पास, ये कंट्रोल करने के, पिगमेंटेशन का इलाज है, एक्नी कंट्रोल का है। इसके अलावा अगर आपको अपने चेहरे पर वाकई रौनक चाहिए तो हमारे पास फेयरनेस की भी क्रीम है, जो काले को गोरा करती है और गोरे को चांद जैसा दिखाती है।
8: वाह वाह वाह।
6: जफर साहब, आपका मानना पड़ेगा, मतलब आप तो टर्किश और ओरिजिन से आते हैं, आपको जरूरत ही नहीं काले और गोरे की, आप तो यू लुक फैबुलस, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि लोगों को जरूरत पड़ सकती है।
9: एक बात बताऊं, सबको काले और गोरे का ख्याल है।
8: अरे वाह वाह। नहीं, मुझे ये बताएं,
9: ठहर जा, सिर्फ काले और गोरे का नहीं, इसमें बालों वाले का और गंजे का भी ख्याल है।
8: हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात यह है कि आप सादा सी मिसाल दे सकते थे कि ये क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आप आमिर जैसे लगेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आप शिवानी जैसे।
9: अरे वाह वाह, इसने अपनी सारी बातें कवर कर ली, इसकी क्लास ना ली जाए।
8: ये नंबर है, ये मिलाइए, 6 4 7 5 2 1 5 1 5 9। ये दो के साथ एक शैंपू फ्री दे रहे हैं, आज की ये ऑफर है, ये नंबर मिलाइए। और जो बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, सफाया हो रहा है बालों का, उससे निजात पाइए, 6 4 7 5 2 1 5 1 5 9। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
9: अभी फोन आया था, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको बताता हूँ। बात यह, हमारा ये ऑयल जो है, ये एलोपेशिया को भी ठीक करता है, और अगर आपके सर में कोई सोराइसिस वगैरह है, जैसे एक्जिमा टाइप का हो जाता है, उसका भी इलाज हम आपको दे सकते हैं। आप फिक्र नहीं करें, सिर्फ बात करें, जरूरी नहीं कि आप बोलें। अगर इलाज करना है तो बात करो, नहीं तो ना करो।
8: बिल्कुल सही। 6 4 7 5 2 1 5 1 5 9। बहुत बहुत शुक्रिया,
6: थैंक यू सो मच जफर साहब। और जफर साहब की फीमेल फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है।
8: जी जी।
6: बहुत सारी जो लेडीज हैं, खवातीन, महिलाएं ओवर 70, अच्छा, उन्होंने यूज किया है, रीयूज किया है और रीयूज करती जा रही हैं, और फोन बजना बंद नहीं हो रहे। एक खवातीन ने नाम कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियल रखने की शर्त पे आपके लिए कुछ एक शेर भेजा है, और गाना भी फरमाइश किया है
8: मलिक साहब के लिए, मेरे होते हुए मलिक साहब के लिए भेज दिया।
6: देखिए, मतलब ऐसा इकोनॉमी की ये कंडीशन आ गई है। और ये गाना जो है, उन्होंने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे, वो कहते हैं कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।
8: अच्छा,
6: आप बिल्कुल अलग रखें शेर से अपने आप को। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो दिल में हमेशा रहते हैं।
8: वाह वाह।
6: कभी आस बनकर तो कभी काश बनकर, या किसी से मिलने का उम्र भर इंतजार बनकर।
8: वाह।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: श्री दुर्गा माता ज्योतिष पंडित रामकृष्ण। जी हाँ, क्या आप अपनी घर गृहस्थी, शादी, प्यार, जीवन, बच्चे, हेल्थ या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर परेशान या निराश हैं? तो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित रामकृष्ण अपने एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की सहायता से आपकी पूरी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल गाइडेंस है। सालों के एक्सपीरियंस से पंडित रामकृष्ण का केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी समस्याओं को सुलझाकर आपको सही दिशा देना। अभी कॉल कीजिए पर्सनल पाम रीडिंग और कंसल्टेशन के लिए पंडित रामकृष्ण 437-882-0639 437-882-0639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
7: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
10: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
9: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
10: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
11: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कॉन्टेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
12: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज। RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ कॉल 416-303-3639 416-303-3639।
13: सुन रहे हैं लवी डवी शो शिवानी और आमिर के साथ।
0: जी, और कहते हैं कि साथ ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे एहसास तेरी नज़दीकियों का नज़दीक आकर ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं।
13: ये ज़रूरी तो नहीं।
0: कहते हैं एहसास तेरी नज़दीकियों का नज़दीक आकर ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। तू जहाँ है वहाँ से और मैं जहाँ हूँ वहाँ से, चलिए रस में मोहब्बत निभाते।
13: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने। कहते हैं मोहब्बत की रस्म निभाने के लिए करना बहुत कुछ पड़ता है शिवानी। जैसे किसी छोटे से नन्हे से बीज से एक पौधा बनता है और पौधा बनते ही हम उसे धूप छांव से बचाते हैं, हम उसको पानी देते हैं, उसको सैराब करते हैं। किसी नन्हे पौधे को सैराब करने और मोहब्बत को सैराब करने में फर्क यह है कि मोहब्बत को होने जिगर देके, रातों की नींद गवा के, दिन का चैन गवा के सैराब करना पड़ता है।
0: बिल्कुल सर।
13: कुर्बानी देनी पड़ती है, इशार का मुजाहिरा करना पड़ता है। ये रिश्ते जो हमारे आसपास हैं, ये मत समझिए, ये मत जानिए कि बेलॉस हैं। ये मत समझिए कि ये जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जा रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, बल्कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
0: करना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं। अपनेपन का शोर नहीं मचाएगा,
13: है ना।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो एक दिन दो दिन वो वैसे ही खड़ा रहेगा, आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसने मुरझाना शुरू कर दिया, रंग थोड़े बदलने शुरू कर दिए, पत्तों हरे पत्तों में पीलापन आना शुरू हो गया, फिर वो एक जो सीधा खड़ा हुआ पौधा था वो बेंड होना शुरू हो गया, उसके बाद वो माजी में तब्दील।
13: मुझे लगता है कि इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये किसी भी पौधे को जैसे खाद की जरूरत होती है, इसी तरह किसी भी रिश्ते को इजहार की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए आप अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार है आपको, माँ भी ये बात जानती है, लेकिन एक दिन आप अपनी माँ के हाथ को अपने हाथों में लें और उससे ये कहें कि अम्मी या माता जी या मदर या मम्मी, मैं तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूं या करती हूं, तो सोचिए जरा कि माँ का दिल कितना बड़ा हो जाएगा, माँ कितनी खुश हो जाएगी कि मेरा बच्चा मुझसे मोहब्बत का इजहार किस तरीके से कर रहा है और कितना वालेहाना है ये। और वो जो बाप ने माँ से मोहब्बत का इजहार किया होगा वो भूल जाएगी सारी उम्र का, वो एक ही इजहार उसको याद रह जाएगा और वो होगा अपने बच्चे की मोहब्बत का इजहार।
0: बहुत सही कहा आपने। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम अपनों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे अपने तो हमें छोड़ के जाएंगे, उन्हें हम थैंक यू बोलना भी भूल जाते होंगे लेकिन कभी आपने सही कहा, एक दिन आप उनका हाथ थाम के देखिए, उनके लिए पास बैठ के कुछ करिए कि आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छुट्टी ले ली, जस्ट टू बी विद यू,
13: बी विद यू।
0: तो कहते हैं ना कि एक तरफ अगर नाराजगी है या एक तरफ कोई मसरूफियत है या किसी वजह से एक इंसान रिश्तों में पहल नहीं कर पा रहा, फीलिंग वही है, पहल नहीं कर पा रहा, तो दूसरे को आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी ने कहा है, अगर उलझा था हमसे तो तुम इसे सुलझा भी सकते थे,
13: वाह वाह,
0: तुम्हारे हाथ में भी तो रिश्ते का कोई सिरा होगा।
13: वाह वाह, क्या कहने शिवानी जी, बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। इसलिए रिश्तों को मजबूत रखने के लिए, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, याद रखिए तोड़ना बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान काम रिश्ते को तोड़ देना है, उसको मलिया मेट कर देना है, उसके तकद्दस को पामाल कर देना है, दरवाजे को बंद कर देना है, ये सबसे आसान है। दरवाजे को खुला रखना, आंधी हो या तूफान, अच्छा वक्त हो या बुरा, जर्फ की, जौक की, तरबियत की यही दलील है कि आप दरवाजों को खुला रखें, चाहे वो घर के हों या फिर दिल के दरवाजे।
0: अमेजिंग आमिर, बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारे लिसनर्स को जरूर ये बात वो गांठ बांधेंगे। और कभी कभी होता है ना कि जैसे आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू किसी तक बात पहुंच जाती है, वो बात सबके दिल में होती है लेकिन वो रिफ्रेश हो जाती
13: है, हो जाती है, सही बात।
0: तो ऐसे ही अगर जिंदगी में भी प्रॉब्लम है तो उसका भी जो सोल्यूशन है, उसका जो समाधान है, उसकी जो रेमेडी है, उसके लिए आपको एक नंबर जरूर घुमाना चाहिए और ये है दुर्गा माता पंडित रामकृष्ण जी का। किसी भी तरीके की परेशानी है, घर गृहस्थी की परेशानी है, मोहब्बत की परेशानी है, प्यार की परेशानी है, और फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं आजकल के हालात के चलते, या जिंदगी में बच्चों के हवाले से कोई परेशानी है, निसंतान जो कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अपनी जिंदगी में खुशियाँ लानी है, ये सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है बेहद सार दल सार के तजुर्बे वाले पंडित रामकृष्ण जी को आप कॉल कर सकते हैं। जिंदगी में खुशियां वापस लाइए, पामिस्ट्री में उनकी महारत है और हाथ देख के आपकी पूरी चीजों के बारे में बता देते हैं। 4374884129 4374884129। और इसी के साथ आमिर अपने लिस्टर से इजाजत लेंगे कल तक के लिए,
13: इस पैगाम के साथ के जिंदगी बहुत छोटी है नफरत के लिए, हकारत के लिए, मनफी एहसासात के लिए, मनफी जज्बात के लिए। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत के जज्बे को इतना आम कीजिए कि आप रहें ना रहें, आपका लगाया हुआ मोहब्बत का ये पौधा हमेशा रहे। ध्यान रखिए, प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आर जे आमिर को इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल सपहर 2 बजे।

0: टिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
1: शालिनी
2: ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर. नए हफ्ते की शुरुआत हुई है. मंडे की दोपहर है, घड़ी में 3 बज चुके हैं और एक बार फिर हम दोनों साथ साथ हैं एक अगले घंटे के इस खूबसूरत से सफर में. दोस्तों, कभी कभी ना हम जिंदगी को खुद ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं. क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा. तो ऐसा करते हैं कि आज इन सवालों को थोड़ा साइड पर रखते हैं और बस इतना सोचते हैं कि जो आज मेरे हाथ में है उसे मैं कितनी अच्छी तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. पूरे रास्ते का पता होना जरूरी नहीं, अगला कदम सही दिशा में हो बस इतना ही काफी है. तो आज पर अपनों पर कुछ भरोसा रखिए, कल खुद संवर जाएगा. हर कदम एक हौसले से बढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकल आएगा. तो मंडे को भारी नहीं बनाते, लाइट करते हैं. काम अपनी जगह, मुस्कान अपनी जगह और म्यूजिक सबसे सही जगह यानी मस्ती की रेलगाड़ी पर. और आज के सफर की शुरुआत करेंगे फिर से आज की ताजा खबरों के साथ. स्टे ट्यून्ड.
1: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.

0: ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने सतेंद्र जीत सिंह यानी गोल्डी ब्रार को अपनी 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव लिस्ट में शामिल किया है और उनकी गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए $1 million तक का रिवॉर्ड अनाउंस किया है। ब्रार पर 2023 में सरी BC में सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ऑर्डर करने का आरोप है। FBI ने उन्हें आर्म्ड और डेंजरस बताया है और ये सभी आरोप अभी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए हैं। हेल्थ केयर से जुड़ी खबर, ओंटारियो हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि वो देश भर के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ फेडरल हेल्थ फंडिंग को लेकर इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। फेडरल हेल्थ का ट्रांसफर फिलहाल 2028 तक कम से कम 5% एनुअली बढ़ने की गारंटी के साथ है और उसके बाद मिनिमम ग्रोथ 3% रहेगी। ये डिस्कशन ऐसे वक्त हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की गवर्नमेंट इस फॉल अपना नया फेडरल बजट पेश करने वाली है। इसी बीच कैनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स की नई स्टडी ने ओंटारियो में प्राइवेट सर्जिकल और मेडिकल इमेजिंग क्लिनिक्स को लेकर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में करीबन 674 मिलियन पब्लिक फंडिंग फॉर प्रॉफिट सर्जिकल और इमेजिंग सर्विसेज पर खर्च हुई है जो 2017-18 से करीबन 48% ज्यादा है। CCPA के एनालिसिस कहता है कि जिन 12 प्रायोरिटी प्रोसीजर्स को एग्जामिन किया गया उनमें से 8 के मीडियन वेट टाइम्स 2017 से 2025 के बीच बढ़े हैं। याद रहे कि CCPA एक पॉलिसी थिंक टैंक है और ये फाइंडिंग्स उसकी एनालिसिस है। टोरंटो में मेयरल इलेक्शन अब करीबन 4 हफ्ते दूर हैं। इलेक्शन डे है 26 अक्टूबर। इनकम्बेंट मेयर ओलिविया चाओ, काउंसलर ब्रैड ब्रैडफोर्ड और फॉर्मर फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर प्रमुख कैंडिडेट्स में शामिल हैं। कैंपेन्स में अफोर्डेबिलिटी, ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी जैसे इश्यूज पर डिबेट जारी है। अंत में वेदर अपडेट, आज स्काइज रहेंगी पार्टली क्लाउडी विद हाई ऑफ 22 और रात का लो जा सकता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आज की आफ्टरनून रहेगी काफी प्लेजेंट और कंफर्टेबल। जुड़े रहिएगा मस्ती की रेलगाड़ी के साथ 4 बजे तक ऑन CMRFM 101.3। गुड आफ्टरनून,
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें। इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम, चलिए आपके पास एक और मौका है अपनी जिंदगी में जीतने का, और ये जीत भी 1, 2, 3, 4 दिन की नहीं, 1 साल की नहीं है, ये जिंदगी भर की जीत है, इसीलिए कहते हैं विन लाइफ टाइम। जॉइनिंग अस नाउ इज रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम विन लाइफ टाइम, राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे राफी जी। तो हमारे लिसनर्स को बताएं, नए हफ्ते का पहला दिन है, किस तरह से शुरुआत की जाए ट्रेडिंग की, और कितना फ्रूटफुल है ये काम, और कौन कौन से लिसनर्स ये काम कर सकते हैं?
2: Anybody age of 18, कोई भी कर सकता है, newcomers, as long as के आप थोड़ी सी स्किल रखते हैं कंप्यूटर यूज करने की, फॉलो कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, तो कोई भी कर सकता है। कोई मेजर कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आए, क्लासेस लें, सॉफ्टवेयर सीखें, एंड देन एक लाइफ टाइम स्किल आपको मिल जाएगी, ताकि कल आने वाले ये स्ट्रेस ना हो कि इनकम कहाँ से आएगी।
1: ओके, वेरी नाइस। तो अब इसमें अगर हम बात करें ट्रेडिंग में राफी जी, तो बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। तो हमारे पास अभी एक मैसेज आया एक लिसनर का कि जब इतना उतार चढ़ाव होता है इस काम में, हम जो पैसे कमाते हैं उसमें, तो फिर हम इसको एक स्टेबल इनकम के तौर पर कैसे ले सकते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए, तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करें प्लीज।
2: ठीक है, मार्केट एवरी सिंगल डे, क्योंकि हम आपका फोकस डे ट्रेडिंग में रखते हैं, एवरी सिंगल डे मार्केट वेव्स की तरह ऊपर भी जाती है, नीचे जाती है, तो ऑफकोर्स हमारा सॉफ्टवेयर इन एडवांस इंडिकेट कर सकता है कि क्या क्या आपकी रेंजेस आएंगी, तो उस प्रोडिक्शन सॉफ्टवेयर की वजह से मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, उतार हो, चढ़ाव हो, आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। एंड ऑफकोर्स सारे के सारे हमारे जो हिस्टोरिकल हमने जितनी भी प्रोडिक्शन किए हैं वो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन।
1: ओके, वंडरफुल। तो अब कैसे शुरुआत की जाए राफी जी? आई एम श्योर आपकी बातें सुनकर हमारे लिसनर्स काफी कन्विंस्ड हो गए होंगे, और वो चाहते होंगे कि इस काम की अब शुरुआत कर ही ली जाए। तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, कैसे शुरुआत की जाए?
2: हाँ, पहला स्टेप आपका इसका पैथ फॉरवर्ड होता है कि आपने आके फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार सुनना है। सेमिनार सुनने के बाद आपने एक डिसीजन मेक करना है। सेमिनार नो ऑब्लिगेशन, नो कॉस्ट है, और अगर आपका डिसीजन हो गया, फिर आपकी एक्चुअली थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं 1 मंथ की। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, फिर मेंटरशिप के साथ बिठा दिया जाता है, तो इट्स नॉट ए 1 डे जॉब। सो एटलीस्ट कुछ लोगों को 14 दिन लग जाते हैं, 2 वीकेंड्स, या कुछ लोगों को मैक्सिमम विद इन अ मंथ अंडरस्टैंड हो जाता है कि डे ट्रेडिंग होती क्या।
1: अच्छा, और मिनिमम कितना कमा सकते हैं पर डे?
2: देखें, हम लोग आपको एटलीस्ट इतना स्टार्ट कर देते हैं कि $50 to $100 पर डे पे कोई भी 23 आवर्स के पीरियड में निकाल सकता है। बट देन अबव साइड पे स्काई इज द बिगिनिंग, आप 1000 कमाएं, 10,000 बनाएं, नो प्रॉब्लम।
1: ओके, वंडरफुल। तो वेल दोस्तों, आप अब देर ना कीजिए, इस नंबर को डायल कीजिएगा, और बिल्कुल फ्री सीट्स आपका इंतजार कर रही हैं। आने वाले सैटरडे होने जा रहा है लाइव सेमिनार इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा। विजिट कीजिएगा winlifetime.com। नंबर इज 9052061008 9052061008। राफी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी, टेक केयर
1: जी। बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना। ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600।

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639। That's 437-882-0639।
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
2: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जी हाँ 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
4: हेलो
5: सर, आपका क्रिस्टल क्लियर वॉइस बहुत अच्छा लगता है ना, क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर वॉइस।
4: मैं सफिया बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे पुराने गाने जो लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वेदर मैं जरूर सुनती हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इसमें काफी सारी बहुत अच्छी बातें हैं। जब मैं जॉब से आती हूँ तो मैंने लगाया होता है, मैं सुनती रहती हूँ सारी बातें। आप सब लॉयर्स को बुलाते हैं और कोई आप अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
6: आई लाइक योर कोड ऑफ द डे एंड प्रमोशंस दैट यू एडवर्टाइज ऑन द थिंग, एंड इट्स नाइसली डन।
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट मस्ती की रेलगाड़ी शो शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और आज बॉलीवुड कैलेंडर में बात उस स्टार की जिसकी आंखों में रोमांस, किरदारों में इंटेंसिटी और डांस में अपना अलग ही एफर्टलेस अंदाज है, और उनका नाम है रणबीर कपूर। 28 सितंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। आज अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे और लेजेंडरी राज कपूर के पोते रणबीर ने फैमिली लेगेसी को बिल्कुल अलग अंदाज में आगे बढ़ाया। 2007 में सांवरिया से शुरुआत हुई, लेकिन वेकअप सिड के सिड, रॉक स्टार के जॉर्डन, बर्फी के बर्फी, ये जवानी है दीवानी के बनी और संजू के संजय दत्त जैसे किरदारों ने उनकी वर्सिटिलिटी दिखाई। और उसके बाद फिर आई ब्रह्मास्त्रा और एनिमल जैसी बड़ी फिल्में जिन्होंने उनके करियर को एक नया मुकाम दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, फिल्म्स में एक्टर बनने से पहले रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। और इनकी फिल्मों की प्लेलिस्ट तो अपने आप में सुपर हिट है, गाना सेलेक्ट करना भी मुश्किल हो गया था हमारे लिए, लेकिन हमने चुना है बहुत ही सुपर हिट गाना इस सेगमेंट के लिए। कहते हैं कि ख्वाब आंखों में हों तो रास्ते निकल ही आते हैं, दिल में हो जुनून तो सितारे भी झुक जाते हैं। और इनको डेडिकेट करते हैं अपना अगला गाना। कहते हैं कि कुछ मोहब्बतें साथ रहकर नहीं, दूर होकर भी दिलों में जिंदा रहती है। ऐसा ही ये गाना है जिसमें कहा जाता है कि शिकायतें खत्म हो जाती हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर दिल से निकली दुआ हमेशा उसी इंसान के साथ रहती है। और इसी अधूरी मोहब्बत, दर्द और दुआ के खूबसूरत एहसास को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म ए दिल है मुश्किल से लिया गया। बहुत प्यारा सा गाना और चंद लाइनें कि हर मोहब्बत को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर चाहने वाले को अपना हमसफर नहीं मिलता, कभी किसी की खुशी के लिए खुद पीछे हट जाना भी इश्क है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा हासिल हो ये जरूरी नहीं होता।

0: मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3 और कहते हैं कि मोहब्बत में हर बार इजहार जरूरी नहीं होता, किसी का हर पल साथ होना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग दूर रहकर भी दिल के इतने करीब होते हैं कि उन्हें भूल पाना कभी मुमकिन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी कोशिशों को पसंद करने के लिए और हमारे शो को पसंद करने के लिए। और आपको बहुत पसंद आएगी अगली आवाज, क्योंकि वो जो आवाज है, हम अभी रणबीर कपूर की वर्सिटिलिटी की बात कर रहे थे, तो जब हम वर्सिटिलिटी की बात करते हैं प्रोफेशन में, तो एक नाम हमेशा याद आता है, वो है #homes का, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं, जरा अलग हट के होते हैं, वो हर एक की पॉकेट को सूट करते हैं, जो आपको ये वो आपको मिल जाता है 100%। और हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड राहुल कश्यप जी, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर इस हफ्ते के न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
1: दीजान जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
0: गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस राहुल जी। तो कैसा रहा वीकेंड, कितने लोग मिले आपसे, और जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट रिलीज था उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स आया?
1: जी, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, जो पहली बात है, साउथ बैंक्स का जो प्रोजेक्ट है मिसिसागा के अंदर, उसके ऊपर आई वुड से अनरियल डिमांड थी, बिकॉज एक जो होता है कि यू नो एलोकेशंस आई है, सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे साइनिंग होनी है, दैट्स प्रीटी मच इट। बट इमेजिन दिस कि जो एलोकेटेड यूनिट्स थी वो भी हम सबको कम पड़े थे, एंड वी हैड टू लाइन अप ओके फॉर मोर यूनिट्स फॉर ओवर 36 आवर्स।
0: Oh my God!
1: There was a lineup to make sure कि जो additional units चाहिए clients के लिए, उसके लिए we were lining up 2 days before the launch on a Saturday, and Saturday was unreal at the sales center. It was really, really madness. But the good part is, clients got what they wanted. There's still a very high demand. Phase one is sold out. Phase two अब बहुत ही जल्द 2 या 3 हफ्ते max में रिलीज होने वाला है फॉर साउथ बैंक, एंड वी आर ऑलरेडी प्रेपिंग फॉर दैट। सो साउथ बैंक, इफ यू डिडंट गेट अ चांस टू गेट अ यूनिट इन देयर, ओर यू डिडंट हियर अबाउट इट अर्लियर बट यू आर इंटरेस्टेड, लेकव्यू विलेज जो साउथ मिसिसागा पोर्ट क्रेडिट का एरिया है, वहां पर ये मास्टर प्लान कम्युनिटी है ऑफ 177 acres, और ये टाउन होम्स इज वन ऑफ द लास्ट रिलीज ऑफ टाउन होम्स इन दिस एरिया, बिकॉज इसके बाद मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ओनली गोना बी कॉन्डोमिनियम्स। So, if you're looking to get 2-bedroom, 2-washroom units, starting from 549,000 the pricing again, this is the area to get into. So, again, get in touch with our team, because we are now prepping up for the release 2, which is coming up in the next 2 to 3 weeks. So, ye to sandbag ki baat hai Mississauga mein. Shahan ji, we know Brampton is hot right now. A lot of people are buying in Brampton because pricing from builders is actually less than resale value. And usi ki wajah se jo cornerstone ka project hai, jo Mississauga Road aur Mayfield pe aane wala hai, the actual intersection for the site is Mississauga Road and Molnes. So it's sandwiched between Mayfield and Sandwood Park, kyunki beech mein bhi pura land hai jo sandwich hai. Lekin Premont Homes is the builder that's actually going to be bringing only 8,000 homes. 8,000 घर वहां पे बनने वाले हैं उस साइट के ऊपर, एंड दे आर वन ऑफ द 3 builders, सो इट्स अ मास्टर प्लान कम्युनिटी, वेरी मैसिव कम्युनिटी। आपका 413 का एक्सेस आपको मिलने वाला है वहां से, बिकॉज द एक्सटेंशन गोना हैपन, कॉस्को वहां पे आने वाला है, एंड यू आर मिनट्स अवे फ्रॉम द माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन। टाउन होम्स के 3 हमारे पास मॉडल्स हैं, एक तो है बैक टू बैक टाउन होम्स 3-story, बट दे आर डबल कार गैराज विद डबल कार पार्किंग ऑन द ड्राइववे, सो 4-car parking.
0: Oh, wow. Very nice.
1: And they're freehold, not maintenance fee, no parcel fee. So absolutely freehold, starting from 649,000. Jo aapke traditional 2-story townhomes hain with a backyard, single car driveway and single car garage, that is starting at 699,000. Jo aapke dual entry townhomes hain, they're starting in the low 700s. So there's an opportunity for every buyer. We also have detached homes starting from just over a million, double car garage. So anybody that's looking for West Brampton project, के अंदर आपको सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट है, दैट्स ऑल्सो एक्सटेंडेड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपकी लेवीज आर टैप्ड, यू आर गेटिंग अ लॉट मोर इंसेंटिव्स, एंड वन थिंग नाउ वी हैव डन शालिनी जी फॉर दिस साइट दैट वी वांट टू ऐड अ लिटिल एक्स्ट्रा टू द कॉर्नरस्टोन, तो उसकी वजह से, बिकॉज यू नो वी हैड अ साइनिंग ओवर द वीकेंड, वी वांटेड टू मेक श्योर ऑल आवर बायर्स आर equally treated. So going forward, for a very limited time, any buyer from Team #homes that's going to buy at the Cornerstone project in Brampton, we're going to give every qualified purchase an iPhone Duo on top of all the incentives, all the pricing that you're getting. Every buyer will be getting an iPhone Duo from Team Hashtag Homes on the qualified purchase. So, you know, we're just trying to make things better. Because mujhe bhi thoda phone upgrade karna tha, so I'm talking to my family and then I'm talking to the clients. And it's like, yeah, you know, I like the new Duo. I want to get it. So I'm like, okay, why don't we make it special for everybody, right? So this is how this idea has come in. So now we're adding this feature over there as well. So jo bhi hamare clients honge, jo bhi hamare listeners hain, if you are interested, not just for the phone, but for getting a right real estate advice, right real estate product that suits your requirements, your needs, get in touch with our team right away. And we're going to make sure we get you the right unit of your choice. Because at the end of the day, we're here to advise you, but the decision making stays with you. And Shanidhi, before we wrap things up, one more site that we're bringing for this week, which is going to be in the East End in Pickering, called Trails of White Whale. Is site ka benefit ye hai to Pickering mein hai. So very, very prime location. Town homes yahan pe shuru hone wale hain from 659,000. These are freehold townhomes. They're starting from 659,000 in Pickering. Now, iski advantage mein aapko bata deta hoon kya hai. Ye brand new townhomes hai, but you're buying it for less than resale. Kyunki any townhomes ki jo comparison hai resale market mein, for the month of June to September 2026, ki main baat karo, right? Resale mein, similar kind of townhomes are selling for 833,000 ki average price mein. That is a difference of $173,000. That's what your average saving is right now if you're going to buy in this brand new project versus resale. Now, single car detach in Pickering at this site, starting at 839,000. Resale market mein, 959,000 key average pricing for the month of June to September for this area. You're saving about $120,000 in comparison to resale. Now, double car garage bhi humare paas hain, 36 and 40 foot options. This site mein double car garage townhomes are starting at 939,000.
0: Very
1: resale
0: nice.
1: Mein, usi area mein, detached double car garage are selling for an average of 1.248.
0: Oh my God.
1: 0.25 million ki average hai. That means you have a savings of about $308,000. 3 lakh ke upar ki aap saving hai double car garage ki compared to resale mein agar aap jaake buy karna chahte hain versus buying into pre-construction. So now this is the advantage that buyers have. That if you are buying into pre-con, there's so many sites jahan pe aap resale se bhi kam le rahe hain, because the best part is you're saving 13% jo HST rebate ka aapko benefit milne wala hai. Ye benefit bahut limited time ke liye reh gaya hai, almost only 5 months left out, because March 31st 2027 ki iski deadline hai. That's probably not going to get extended. That's what I'm, you know, my gut feeling tells me right now, because they have already given us 1 year. Jo April 1st se shuru hua tha, to March 31st se jayega. Ye ek saal mein, whoever is ready to buy, is ready to take advantage of this, you're saving anywhere between $120,000 to almost $300,000, depending on the product. You cannot go wrong with that. If somebody says, how do I make money in real estate? In this market, jahan pe sab kuch hi niche hai, is time pe otherwise nahi hai. Well, this is how you do. You look at the retail. Resale agar niche bhi aayi hui hai, ये प्रोडक्ट तो उससे भी कम सस्ते में मिल रहा है.
0: सही बात है.
1: अगर हम कहते हैं ना, अभी काफी लो हो चुकी है, हिट रॉक बॉटम. या एब्सोल्युटली, अगर रीसेल मार्केट रॉक बॉटम पे है और वहां पे आपको डबल का गराज आपको 1.25 मिलियन का मिलेगा एवरेज पे, लेकिन बिल्डर उसी एरिया में कह रहे हैं कि मैं आपको तो 9,40,000 का देने को तैयार हूँ,
0: तो नया लो फिर, पुराना क्यों लेना.
1: Exactly, because new home, new finishings, upgrades, you know, carry on warranty, name it, everything is there. Right? And you're comparing apples to apples. We're not comparing apples to oranges. We're comparing apples to apples. Towns versus towns. Single car versus single car. Double car versus double car garage detached, right? So it's apples to apples. This is how you make a sound decision in real estate. So if you want to see in Pickering, get in touch with our team. We're going to make sure we set up your appointment at the sales center, because we want you to come down, have a look at the site, have a look at the floor plans, decide which one you want to go for. Because again, the best part is you're buying below resale. If you are interested in West Brampton, get in touch with our team right away, because again, Cornerstone, we have an amazing offer going on there, not just the price point wise, but also in addition to what Team Hashtag is going to do for you. And last but not but least, South Banks, sold out first phase, no problem guys. Second phase is going to be coming up 2 to 3 weeks, so get ready for that. एंड वी आर सुपर एक्साइटेड शानन जी अक्टूबर 15 वी आर ब्रिंगिंग बोल्टन माउंट होप और कोलंबिया वे की जो लोकेशन है बोल्टन के अंदर नॉर्थ हिल प्रोजेक्ट का नाम है सोलमार्ग डेवलपर है वहां पे टाउन होम्स आर गोना बी स्टार्टिंग ट्रेडिशनल फ्रॉम 789,000 बोल्टन के अंदर फ्री होल ट्रेडिशनल 25 फुट की फ्रंटेज होगी इनकी दैट्स व्हाट द टाउन होम्स आर कमिंग इन एंड द डिटैच इन बोल्टन स्टार्टिंग फ्रॉम 999,000
0: Wonderful price.
1: So yeah, this project is coming in the month of October, October 15th. So we're going to be gearing up for that as well. And obviously, aane wale hafte mein, we're going to update our listeners with more details on these things.
0: Kya baat hai? बिल्कुल एक जो है ना पिक्चर बुक की तरह आपने जो है ना शुरू से लेकर एंड तक राउंड अप दे दिया राहुल जी और मुझे पता है कि व्हेन यू गिव डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स आपके सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती बिकॉज इट इज ऑल इन योर माइंड आप इतने सारे यू नो क्लाइंट्स को लेकर जाते हैं इतने सारे दोस्तों को लेकर जाते हैं साइनिंग कराने के लिए तो आपकी एक नॉलेज होना बड़ी जरूरी है जब आपके पास कोई आता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ द मार्केट यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट्स ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट है सिर्फ वो ही सेल करना है सो यू आर गिविंग ऑप्शंस टू पीपल एंड देन यू आर लेटिंग देम डिसाइड रादर देन पुशिंग देम टू साइन व्हिच इज ग्रेट और यहाँ पर मैं बता दूँ एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हैशटैग होम्स उन चंद यू नो प्रोफेशनल्स में शामिल हैं जिनके पास अपने खुद के लॉयर्स हैं तो जब आप साइन करते हैं तो बड़े सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं और हमें नहीं पता होता हमसे एक गलती से मिस्टेक हो जाती है झुकाना है ना गलती से मिस्टेक वाला हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते तो इसके लिए लॉयर्स भी हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएगा वो फुली रिव्यू करने के बाद आएगा आप लॉयर के साथ रिव्यू भी कर सकते हैं सो वेल मॉर्गेज लॉयर रियल एस्टेट प्रोफेशनल स्टेजिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ दैट इज हैशटैग होम्स नंबर नोट करें दोस्तों टू कॉल और टेक्स्ट राहुल जी राइट अवे टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज एंड टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन 6479934844 6479934844 राहुल जी थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी ऑल द बेस्ट
1: थैंक्स सो मच
0: ओके यू मोस्ट वेलकम चलिए दोस्तों और अब शो को आगे बढ़ाते हैं और मस्ती की रेलगाड़ी को खड़ा करते हैं अपने नेबरहुड में जी कहते हैं कि जो लोग हैं ना जो हमारे रिश्तेदार तो नहीं होते लेकिन कई बार रिश्तेदारों से पहले काम आ जाते हैं वो होते हैं हमारे पड़ोसी आज है नेशनल गुड नेबर डे यानी जो हमारे नेबर्स हैं उनको अप्रिशिएट करने का दिन है कभी चीनी खत्म हो जाए कभी घर पर कोई पार्सल लेना हो कभी छुट्टियों में पौधों का ख्याल रखना हो एक अच्छा पड़ोसी सच में जिंदगी को थोड़ा आसान और मोहल्ले को थोड़ा अपना बना देता है और बॉलीवुड में पड़ोसी की बात हो और पड़ोसन याद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है वैसे फिल्म में पड़ोसन सामने वाली खिड़की में हो तो कहानी दोस्ती से थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है कहते हैं कि घर दीवारों से बनता है मोहल्ला अपनों से बनता है कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं अनजाने सपनों से जरूरी नहीं कि हर अपना एक ही घर में रहे कभी कभी अच्छा पड़ोसी भी परिवार बन जाता है दिल से

कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
0: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हाँ, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। 6473278111, 6473278111।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम। आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3, और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान, लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, 10 AM to 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे। प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
3: हेलो, तो आपका क्रिस्टल क्लियर वॉइस बहुत अच्छा लगता है ना, क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर वॉइस।
4: मैं सोफिया बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप तो यहाँ पे जो पुराने गाने जो लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वेदर मैं जरूर सुनती हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इसमें काफी सारी बहुत अच्छी बातें हैं। जब मैं जॉब से आती हूँ तो मैंने लगाया होता है, मैं सुनती रहती हूँ सारी बातें। आप सब लॉयर्स को बुलाते हैं और कोई आप अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं।
5: I like your quote of the day and promotions that you advertise on the thing, and it's nicely done.
6: दोस्तों, कल रात टोरंटो ने सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं देखा, कल रात टोरंटो ने एक यादगार शाम को जिया। हजारों की तादाद में लोग स्कोशिया बैंक अरीना में हुए, खचाखच भरा हुआ हॉल, हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, उत्साह, और मंच पर वो आवाज जिसका जादू पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोलता है। उस साल राहत फतेह अली खान साहब और उनके साथ थे उनके बेटे भी शाहजमान अली खान, और एक वाकई सोल्ड आउट म्यूजिकल एक्स्ट्रा विगैंजा था। और बड़े दिल से बधाई देते हैं ट्रू साउंड लाइव और हिल टॉप प्रमोशंस की पूरी टीम को, और कहते हैं दोस्तों कि महफिल में सुरों का जादू था, हर चेहरे पर खुशी बेशुमार थी, मंच पर आवाज राहत साहब की थी, और पर्दे के पीछे आपकी मेहनत की चमक जो थी वो बरकरार थी। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी के बड़े पॉपुलर नेम वाजिद मलिक जी। बड़ी मेहनत के साथ ये शो उन्होंने और उनकी टीम ने पहुंचाया, तो वाजिद जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड वेलकम टू योर शो। थैंक यू।
7: थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, कांग्रेचुलेशन हमें नहीं आपको देनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी आवाज इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेती है, ऐसे ही राहत फतेह अली खान की आवाज ने रात को 10,000 से ओवर बंदे खचाखच और लास्ट मिनट पे जितनी कॉलें आ रही थी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली और जो रह गए, बाखुदा मुझे अफसोस भी है, क्योंकि हम बड़े दिन से अनाउंस कर रहे थे कि टिकट ले लें, लेकिन अपनी कम्युनिटी लास्ट मिनट का वेट करती है, तो लास्ट मिनट पे हम उन्हें टिकट प्रोवाइड नहीं कर सके। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, लेकिन आप लोगों की मेहनत, रेडियो, आपके रेडियो के तावन से ये शो सोल्ड आउट हुआ, इसमें आपका भी शुक्रिया, पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया, तहे दिल से हम करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये शो एंजॉय किया। और शालिनी जी, एक दफा फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमारी हेल्प की है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप हेल्प करेंगे।
6: थैंक यू सो मच, जरूर करेंगे वाजिद जी, और बड़ी मेहनत के साथ आप ये शो लाते हैं, और आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, तो जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को लेकर आता है ना, तो उसमें एक फील डालता है शो में, तो आप जो फील डालते हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो फील अपने आप में जो है ना रंग दिखाती है जब वो आर्टिस्ट स्टेज पर आता है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम। आपने आई नो सैकड़ों स्लीपलेस नाइट्स ली होंगी टू ब्रिंग दिस शो अलाइव ऑन द स्टेज, और महीनों तीनों की मेहनत तब कामयाब हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन हमसे जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर फ्यूचर एंड लुक फॉरवर्ड टू प्रमोटिंग योर शो वेरी सून.
7: थैंक यू वेरी मच शालिनी जी. थैंक यू वेरी मच.
6: एनी टाइम. टेक केयर.
7: थैंक यू
6: जी. और दोस्तों आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार ऑन सीएमआर एफएम 101.3 मेरे यानी शालिनी के साथ. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812. और दोस्तों कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनसे रिश्ता बनने से पहले ही दिल उनसे जुड़ जाता है. वजह क्या है ये दिल भी नहीं जानता. बस उनकी एक झलक एक मुस्कान और मन बार बार उन्हीं की तरफ खींचा आता है. तो चलते हैं दोस्तों 1999 की फिल्म मन की तरफ. उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजें और पर्दे पर आमिर खान और मनीषा कोइराला. मस्ती की रेलगाड़ी पर

0: मस्ती की रेलगाड़ी पर आप हैं सवार सीएमआर एफएम 101.3 पर। ये गाना आप तक पहुंचाया यश विंडोज एंड डोर्स ने। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यहाँ पर सर्विसेज मिलती हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और खुद की प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर आपको स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ मिलती है। और साथ ही अगर आप ढूंढ रहे हैं एक फ्रेंचाइज ऑप्शन, इफ यू वांट टू जॉइन अ ग्रोइंग टीम, सो कॉल कीजिएगा यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दे ओल्ड ट्रैवल ने को स्पॉन्सर किया ये सेगमेंट और आप तक पहुंचाते हैं टोरंटो से दिल्ली स्पेशल फेयर फरवरी से मार्च तक। रिटर्न फेयर है $4,560 में, बिजनेस क्लास लगा हुआ है दो बैग्स के साथ। यस, फरवरी जाना, मार्च में आना। 4,560 टोरंटो से दिल्ली दो बैग्स के साथ बिजनेस क्लास। फिर दिल्ली से टोरंटो वन वे नवंबर टू दिसंबर $780। फिर दिल्ली से टोरंटो नवंबर दिसंबर डिपार्चर और जनवरी से फरवरी तक रिटर्न फेयर स्पेशल फेयर है $1,450। टू लोकेशन टू सर्व यू, इटोबिकवन ब्रैम्पटन, दी ओल्ड ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप हैं सवार शालिनी के साथ ऑन सीएमआर एफएम 101.3। अपने बिजनेस प्रमोशंस के लिए हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द शो, फोन कॉल्स के जरिए या मैसेजेस के जरिए 416-569-7812। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आज रणबीर कपूर का बर्थडे है। एक बड़ा प्यारा सा गाना है, लाइट सा गाना है, उस गाने के साथ आपको जोड़ेंगे बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड।
1: Hello GTA, this Diwali, gather your family and witness the timeless journey of Lord Ram come alive on the stage. Experience Ram Ki Leela, a spectacular live production created by a passionate Canadian cast and crew with breathtaking costumes, authentic props, powerful music and cinematic visuals that will make you part of the story. And don't worry, if you are new to the Ramayana, brief English captions before each scene help you follow the story without missing the magic. Join us at Rose Theatre Brampton on Saturday, October 3rd at 3 PM or 7:30 PM show. Ram Ki Leela presented by Kahani Junction in association with Crown Group of Hotels. Bring your family, celebrate our culture, leave the story. For tickets, please visit Rose Theatre website or call MJ at 647-395-6575 for group bookings and discounts. Jai Shri Ram.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड. घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए. ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटीरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग. चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सोल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन. कॉल कीजिए 416-831-4790, 416-831-4790. क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस. चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है. कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझ कर सही गाइडेंस और सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं. अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639. That's 437-882-0639.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.

0: सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. शॉन एक्सप्रेस, अ शॉन मीडिया प्रेजेंटेशन.
1: खाबों की नदी में खाए गोते. Oi.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views, opinions, and information expressed by hosts, guests, experts, and advertisers on Jam 101.3 are their own and do not necessarily reflect those of Jam 101.3 or CMR. Information shared on this program is for general informational purposes only and should not be considered professional, legal, financial, or medical advice. Jam 101.3 does not independently endorse or guarantee claims, products, or services offered by advertisers or sponsors. Thank you.
3: ये है जैम ऑन द सीएमआर 101.3 जतिन और अमिताभ के साथ हो जाइए टेंशन फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री। हाँ जी बेंद्र भाइयों नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वनकुम और केम शो। हम हैं आपके दोस्त जतिन अमिताभ जी के साथ। बेंद्र भाइयों कुछ बातें दिल से हो, कुछ नगमे प्यार के हो, कुछ किस्से जिंदगी के, कुछ पल बाहर

0: 24/7.
1: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111। अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर आर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस, आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रेम्पटन और स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
2: GTA ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं, लेकिन उनका अटेंशन तो बिल्कुल फ्री है। टर्न ड्राइव टाइम इनटू योर बिजनेस टाइम। एडवर्टाइज ऑन जैम 101.3 वीकडेज 4 to

0: Jam 101.3. Call 647-646-3400.
1: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। मैं हूं अमिताभ और आप सुन रहे हैं जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। चलिए रुक करते हैं भारत की आज की कुछ हेडलाइंस का। इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर सियासी जंग तेज। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पोल पैनल का बचाव किया, जबकि ऑपोजिशन सितंबर 30 को ज्वाइंट स्ट्रेटजी पर मीटिंग कर सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ड्रॉट कंडीशंस के असेसमेंट के लिए सेंट्रल टीम भेजेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पानी और फसलों को लेकर बढ़ती परेशानियां रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU में वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद क्लासेस 10 दिन के लिए सस्पेंड, मिड टर्म एग्जाम्स पोस्टपोन और कैंपस के आसपास 2000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने LPU वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस की जांच में सख्त एक्शन का हुक्म दिया। पुलिस ने केस रजिस्टर करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। दिल्ली गवर्नमेंट विंटर पोल्यूशन से निपटने के लिए नो PUC, नो फ्यूल, हायर पार्किंग चार्जेस और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे मेजर तैयार कर रही है। हमारे GTA ट्रेवलर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्री ट्रिप अपडेट है। कर्नाटका के कोस्टल मलनाड टूरिज्म पॉलिसी 2026 अनाउंस की, जिसमें एलिजिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा। ओवरसीज इंडियंस और इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी का कॉरिडोर है ये। तो ये थी इंडिया की यानी भारत की कुछ हेडलाइंस। मैं हूं अमिताभ, आप सुन रहे हैं जैम 101.3। जरा सुनिए तो

0: ट्रैफिक स्लो हो सकता है लेकिन मौज मस्ती नहीं. जैम 101.3 ऑन CMR विद जतिन एंड अमिताभ डेली 4-5 PM. जरा सुनिए
1: जी मित्र भाइयों, ये है जीएम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. हम हैं आपके दोस्त जतिन. ऑन्टारियो की हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट बाहर आई है. ऑन्टारियो में कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स को प्राइवेट फॉर प्रॉफिट क्लिनिक्स में करवाने का उद्देश्य था कि मरीजों का वेटिंग टाइम कम हो और उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके. लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोसीजर्स में इंतजार कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट में 2017 से 2025 के आंकड़ों को देखा गया और बताया गया कि 12 प्रायोरिटी प्रोसीजर्स में से 8 के मेडन वेट टाइम्स बढ़ गए हैं. मिसाल के तौर पर MRI स्कैन के लिए मेडन वेटिंग टाइम करीब 35 दिन था, वो बढ़कर 47 दिन हो गया है. यही कैटरेक्ट सर्जरी के वेटिंग टाइम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऑन्टारियो सरकार का कहना है कि प्राइवेट क्लिनिक्स के जरिए ज्यादा सर्जरीज और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं और इससे हेल्थ केयर कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिल रही है. महेंद्र भाइयों, सवाल ये है कि वेट टाइम बढ़ने से पेशेंट्स को कितना फायदा हुआ? एक बात बहुत सिंपल है, मरीज के लिए स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा जरूरी होता है समय, क्योंकि जब दर्द अपना हो तो कैलेंडर का हर दिन थोड़ा लंबा लगता है. ऑन्टारियो में सर्जिकल वेट टाइम्स की समस्या पहले से ही है, क्या ये समस्या दूर हो सकेगी? इलाज पब्लिक हो या प्राइवेट, मरीज की सबसे बड़ी उम्मीद यही है डायग्नोसिस जल्दी हो और ट्रीटमेंट के लिए तारीख बहुत दूर न मिले, तारीख में तारीख न मिले. ये जैम 101.3, हम हैं आपके दोस्त जतिन.

0: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
2: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया है अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले आज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288557 अनाज मार्ट।
5: घर खरीदना हो, बेचना हो या इन्वेस्टमेंट का हो प्लान, कंफ्यूजन छोड़िए और जाने माने रियल्टी एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछिए अपना कोई भी सवाल। सुनिए रियल एस्टेट पर चर्चा विद पीके सभरवाल एवरी वेंसडे शाम 4:25 पर सिर्फ जैम 101.3 पर। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल विद पीके सभरवाल।
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: चौके छक्के और क्रिकेट का जुनून, जैम 101.3 with Jatin and Amitabh.
8: जरा सुनिए तो।
9: क्रिकेट की आज की अपडेट्स, only on Jam 101.3.
8: जरा सुनिए तो।
10: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और आप सुन रहे हैं जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो। विराट और शुभमन के धमाकेदार शतक, कुलदीप की फिरकी और दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड से बड़ी खबरें, चलिए शुरू करते हैं आज का क्रिकेट राउंडअप। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में कल इंडिया ने वेस्ट इंडीज के 295/7 को सिर्फ 41.4 ओवर्स में 300/2 बनाकर चेस किया और पहला ओडीआई आसानी से 8 विकेटों से जीत लिया। विराट कोहली ने 88 बॉल्स पर अनबीटन 139 रन बनाए और कप्तान शुभमन गिल ने 108 बॉल्स पर 110 रन बनाए, लेकिन 4 विकेट्स फॉर 40 रन लेने वाले कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल में इंडिया अफगानिस्तान का मैच बारिश के कारण एक भी बॉल बोल हुए अबैंडन हुआ और हायर सीडिंग के बेसिस पर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। लंदन के किया ओवल में इंग्लैंड ने 355/7 बनाने के बाद श्रीलंका को 132 पर समेट कर तीसरा ओडीआई 223 रन से जीता। 105 बॉल्स पर 126 रन बनाने वाले टॉम बैंटन बने प्लेयर ऑफ द मैच। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने 365/9 बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 333 यानी 333 रन पर रोककर दूसरा ओडीआई 32 रन से जीता। 93 बॉल्स पर 142 रन बनाने वाले, माफ कीजिएगा, डेविड मिलर प्लेयर ऑफ द मैच बने। इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा ओडीआई वेंसडे सितंबर 30 को गुवाहाटी में होगा। करीबियन टीम के लिए सीरीज बचाने का और टीम इंडिया के लिए सीरीज को रैप अप करने का सुनहरा मौका। तो ये थी क्रिकेट की दुनिया की आज की कुछ हेडलाइंस। क्रिकेट की दुनिया की अगली हेडलाइंस लेकर हम उपस्थित होंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ।

Realtors, what if your brokerage actually helped grow your business? For a limited time, no desk fees, industry-leading commission splits, one-on-one mentorship, plus practical sales and lead generation training. Our state-of-the-art studio creates unlimited social media and property videos for you absolutely free. Paperwork or admin work bhi hum sambhalenge. And yes, leads bhi hum provide karte hain. तो अगर आप अपने रियल एस्टेट करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टीज से जल्दी जुड़िए। कॉल करें 647-859-2000, दैट्स 859-2000। होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी, वी एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस।

0: Women at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जीवेंद्र भाइयों, ये है जेएम 101.3 विद जतीन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतीन। ओंटारियो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी क्वींस पार्क पर सुरक्षा में तैनात एक पुलिस ऑफिसर की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक यह पुलिस ऑफिसर जोशुआ पिछले करीब 3 वर्षों से लेजिस्लेटिव प्रोटेक्टिव सर्विस के सदस्य थे। रविवार सुबह एक मोटर व्हीकल कोलिजन में उनकी जान चली गई। फिलहाल दुर्घटना कैसे हुई इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऑन्टारियो लेजिस्लेचर की स्पीकर से लेकर ऑन्टारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने श्रद्धांजलि दी। डग फोर्ड ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि क्वींस पार्क की सुरक्षा में काम करने वाले अधिकारियों की सेवा के लिए आभार व्यक्त करता हूं और जोशुआ के परिवार, दोस्तों और कलीग्स के प्रति संवेदना है। दोस्तों, इस खबर पर बस इतना ही कहना चाहेंगे। कुछ लोग अपनी ड्यूटी सिर्फ निभाते नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से दूसरों को सुरक्षित होने का एहसास भी दिलाते हैं। जोशुआ की असमय मृत्यु और परिवार और क्वींस पार्क कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ी क्षति है। जिंदगी की राह में कुछ सफर अचानक थम जाते हैं। लेकिन सेवा से जुड़े लोग यादों में हमेशा रह जाते हैं। हमारी ओर से जोशुआ ये पुलिस ऑफिसर को विनम्र श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Mortgage rates, renewals, refinancing. ये अपने पहले घर का सपना. अप्रूवल कैसे मिले, पेनल्टीज से कैसे बचें और सही मॉर्गेज कैसे सेलेक्ट करें. हर सवाल का मिलेगा सीधा एंड प्रैक्टिकल जवाब. ट्यून इन टू मॉर्गेज मास्टर क्लास विद अयाज हर थर्सडे शाम ठीक 4:30 PM लाइव ऑन जैम 101.3.
1: सरप्राइज.
2: वाओ, इतना सुंदर घर, सजावट और पूजा का सारा सामान भी है.
1: जी बिल्कुल, ये सब पॉसिबल हुआ इंडिया सजावट एंड पूजा हट की वजह से. पिछले 15 सालों से ब्रैम्पटन में बस एक ही लोकेशन, बेशुमार सजावट का सामान, वैरायटी ऑफ टेंपल्स, गॉड गॉडेसेस के ढेरों स्टैचूज, पूजा एवं हवन सामग्री, पूजा यूटेंसिल्स, वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, फेंग शुई, वास्तु प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ. ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: आप सुन रहे हो आपका अपना CMR FM 101.3 और मैं हूँ आपका अपना रणबीर चौहान लेके आ रहा हूँ आपका अपना रेडियो एशियन कनेक्शंस फ्रॉम 1 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक. जी हाँ, 10 AM टू 12 PM इसी चैनल CMR FM 101.3 पे. प्लीज कॉल मी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स. 416-910-2000, दैट्स 416-910-2000. 1 अक्टूबर से सुबह 10 से दोपहर 12 तक एशियन कनेक्शंस.
4: बॉलीवुड की हर धड़कन अब GTA में. जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.
5: इट्स बॉलीवुड टाइम, लेट्स गो.
6: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ और मैं हूं अमिताभ. और अब वक्त है लाइट्स कैमरा और एंटरटेनमेंट का. बॉलीवुड, बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग की दुनिया की कुछ खास खबरें. आइए रुक करते हैं. सलमान खान ने बिग बॉस 20 पर फेक AI वीडियोस के मिसयूज के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की है. डीप फेक्स और डिजिटल आइडेंटिटी पर बॉलीवुड की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये. सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन ने ओपनिंग वीकेंड में इंडिया में 33.35 करोड़ रुपए कमाए. एक्टर का 11 साल में सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और करियर का थर्ड हाइएस्ट ग्रॉसिंग वीकेंड बना ये. नीम करोली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए माइलस्टोन क्रॉस कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है. हमारा कहना यह है कि ये फिल्म नहीं है, ये फिनोमिना बन चुकी है. रामायण के कोस्टार रवि दुबे ने रणबीर कपूर को उनके 44th बर्थडे पर द वेरी बेस्ट वी हैव कहा, जबकि फिल्म की रिलीज डेट नवंबर 5 पर शिफ्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है. धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने मुंबई में रिपोर्टेडली 33.26 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा है. स्टार की रिन्यूड बॉक्स ऑफिस पॉपुलैरिटी का रियल एस्टेट कनेक्शन है ये. नानी की तेलुगु फिल्म द पैराडाइज ने वर्ल्ड वाइड 139 करोड़ कमाकर उनके करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का मकाम हासिल कर लिया है. साउथ सिनेमा का पैन इंडिया इम्पैक्ट जारी है. बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से फिलहाल इतना ही. मैं हूं अमिताभ और आप सुन रहे हैं जैम 101.3. जरा सुनिए तो.

0: फ्रेश फ्रूट्स, हर तरह की ग्रोसरी आइटम्स और इंडिया से आया आपका मनपसंद सामान मिलेगा अब बेस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि आपके अपने शहर में आ गया है अनाज मार्ट। डेली ग्रोसरी हो, चावल, दालें, आटा, देसी घी, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का बाकी जरूरी सामान, सब कुछ अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी और बढ़िया प्राइसेस पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज ही विजिट करें अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड और मेफील्ड रोड का कॉर्नर, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन, 905-928-8557, अनाज मार्ट।
1: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हो, तो कॉल कीजिए कुमार 905-929-4881। कुमार आपको अपने कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आप इजिली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 905-929-4881 or visit kumartradessolutions.com।
2: हाँ जी मित्र भाइयों, वॉन से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप कहेंगे भाई ये सड़क थी या फॉर्मूला वन का ट्रैक। दिल तो कहता है स्पीड में गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल चलाए, लेकिन स्पीड की भी एक लिमिट होती है। यॉर्क रीजन में पुलिस ने एक ड्राइवर को 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। इतनी तेज रफ्तार में जरा सी गलती भी ड्राइवर के साथ साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस लगातार ड्राइवर्स को याद दिलाती रहती है कि स्पीड लिमिट कोई सजेशन नहीं बल्कि कानून है, और तेज रफ्तार कुछ मिनट तो बचा सकती है लेकिन एक दुर्घटना पूरी जिंदगी बदल सकती है। वॉन भी रोड सेफ्टी और स्पीडिंग को कम करने के लिए कई इनिशिएटिव्स चला रहा है। बहनों भाइयों, 205 की स्पीड देखकर तो जीपीएस भी शायद कह दे भाई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, ऊपर नहीं। इसलिए गाड़ी चलाइए जरूर, लेकिन एक्सेलेटर के साथ समझदारी का ब्रेक भी हमेशा रेडी रखिए। हाँ जी बिंदर भाइयों, ड्राइवर कॉट गोइंग 205 किलोमीटर पर आवर्स इन वॉन। स्पीड जान ले सकती है, जान दे नहीं सकती मेरे भाई। हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जेएम 101.3 जतिन और अमिताभ के संग जनहित में जारी।

0: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
1: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232।
2: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabharwal.com.
2: Your search ends here.
3: सहजा करला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 647-327-8111। अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस। आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो 647-327-8111 647-327-8111।
4: GTA ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं, लेकिन उनका अटेंशन तो बिल्कुल फ्री है। टर्न ड्राइव टाइम इनटू योर बिजनेस टाइम। एडवर्टाइज ऑन जैम 101.3 वीकडेज।

0: Jam 101.3. Call 647-646-3400.
1: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जी एम 101.3 विथ जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। बंदर भाइयों, पील रीजन से कार ओनर्स के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 2026 के पहले 6 महीनों में पील रीजन में ऑटो थेफ्ट यानी गाड़ियों की चोरी के मामलों में लगभग 10% की कमी दर्ज की गई है। यानी ब्रैम्पटन और मिसिसागा जैसे इलाकों में पिछले कुछ समय से जिस तरह कार थेफ्ट बड़ी चिंता बनी हुई थी, उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि लोगों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी हमेशा लॉक करें, की फॉब को सुरक्षित जगह रखें और संभव हो तो स्टीयरिंग व्हील लॉक या दूसरी एंटी थेफ्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। बंदर भाइयों, 10% की कमी अच्छी खबर जरूर है, लेकिन कार ओनर शायद यही कहेगा, पुलिस जी हमें 10% नहीं पूरे 100% की छुट्टी चाहिए कार थीव से। तो राहत जरूर है, लेकिन सतर्कता भी अभी जरूरी है, क्योंकि अपनी गाड़ी की सुरक्षा में थोड़ा सा ध्यान बड़ी परेशानी से बचा सकता है। सुरक्षित रहिएगा, गाड़ी को भी सुरक्षित रखिएगा। ये है जीएम 101.3 जतिन और अमिताभ के संग। हम हैं आपके दोस्त जतिन।

तो बस दोस्तों, मंडे का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपकी वीक की शुरुआत हमारे साथ थोड़ी और मुस्कुराहट के साथ हुई होगी। कल फिर मिलेंगे नए गीत, नई बातें और नई एनर्जी के साथ। मैं हूं अमिताभ, आप जुड़े हुए हैं जैम 101.3 के साथ। और जाते जाते भी हमारा यही कहना है, जैम 101.3 जरा सुनिए तो।

नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने सवाल पूछे हैं, बूझे हैं. टेढ़े मेढ़े आरे तिरछे स्मार्ट से लेके दोज साउंडिंग बेवकूफाना तक, तब कहीं जाके वो समझदार बने हैं, है ना. तो बस क्यूरियस जॉर्ज बने रहो, सवाल पूछने से ना डर.

क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. प्लेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइट सेल्स इवेंट का फायदा उठाए। सिर्फ 0% से फाइनेंसिंग और पाए $500 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ सितंबर 30 तक है। हम पे करते हैं टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। एट डॉन वैली नॉर्थ हंडे वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई.com या वुडबाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट मार्कम्पर। A proud member of Wayne's Auto Group.
2: फायदा उठाएं बैक टू स्कूल के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 इयर्स फिक्स्ड 3.94%, 5 इयर्स फिक्स्ड 4.04%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.45%। साथ ही ले हॉट हॉट कैश बैक भी अप टू $5,600। इतना ही नहीं, एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.ca।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स RJ Swati_Toronto।

0: Toyota Get In and Go Event at Don Valley North Toyota, Corolla and Corolla Hatchback और GR Corolla की huge selection में से अपनी favorite Toyota choose कीजिए और अपनी trade-in पर पाए top dollar. जल्दी कीजिए, wait मत कीजिए. आज ही visit कीजिए Don Valley North Toyota, Canada's number one volume Toyota dealership. DonValleyNorthToyota.com located here 3300 Steeles Avenue, East Markham, per. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m. CMR 101.3 FM पर ये टाइम एक फ्रेश प्लीज न्यू रिलीज आपको सुनवाने का. मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस्विनी और जो गाना हमने आज पिक किया है इट्स फ्रॉम द अपकमिंग यूथफुल रोम कॉम ड्रामा बाय लव रंजन और प्यार का पंचनामा एंड सोनू के टिटू की स्वीटी. वो जो फिल्म बनाई थी ना जिन्होंने उन्हीं की ये फिल्म है. अब उनकी ऐसे टॉपिक पर अच्छी पकड़ है जैसे कि यूथ साइकी जॉनरा रिलेशनशिप जो आजकल होती है ना. इस फिल्म में नए छह चेहरे आपको दिखेंगे. दे आर मेकिंग देयर डेब्यू थ्रू पहला प्यार दूसरी बार. यस दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म एंड एज द नेम सजेस्ट कहानी भी ऐसी है कि कैरेक्टर सीम्स टू बी फॉलिंग इन लव अगेन विद देयर फर्स्ट स्कूल कॉलेज वाला लव. और स्टोरी फॉलो करती है तीन पक्के दोस्त जो हाई स्कूल रीयूनियन पार्टी अटेंड करने जाते हैं. गोल है टू कन्फेस देयर फीलिंग्स उन लड़कियों से जो उनकी स्कूल क्रश थी. पर सेकंड चांस रोमांस इतना आसान कहाँ होता है जितना सोचा होता है ना. तो लव ट्राइंगल्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स एट्सेट्रा वो सब होते हैं. रेड फ्लैग्स भी दिखते हैं और दोस्ती सर्वोपरि है ये भी समझ में आता है. मतलब बाकी थीम वही है जो लव रंजन की फिल्मों में होता है कि फ्रेंडशिप कम्स फर्स्ट और रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स देखो भाई ध्यान से देखो है ना. देन कमिंग टू द एल्बम, फिल्म में छह गाने हैं. सारे गाने अलग अलग मूड अलग अलग जॉनरी टाइप के हैं. कोई आइटम नंबर टाइप का नहीं है. सुनने लायक हैं सारे. अलग अलग अच्छे अच्छे सिंगर्स की आवाज़ों में अलग अलग गाने हैं. म्यूजिक रोचक कोहली का है. वो हैज परफेक्टली ब्रिज्ड आई वुड से द गैप बिटवीन दैट ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया एंड मॉडर्न रिलेशनशिप बैंगर्स. गाना जो मैं आज सुनवाने जा रही हूँ पहली बार इस एल्बम से मुझे सुनते ही ना क्लिक कर गया, अच्छा लगा, तभी सोच लिया था आपको सुनवाऊंगी. कुमार ने लिरिक्स में ना हम सभी के इमोशंस की जैसे नब्ज पकड़ ली है. व्हेन ही राइट्स के मिलते थे हम पहले तो फिर भी निकाल के फुर्सतें, अब फिर बिना मिले ही बीत जाते हैं जमाने, लेके हमको अब ये जरूरतें थी उन दिनों में भाई कुछ तो बात, यू नो लाइक लॉन्गिंग फॉर फ्रेंड्स एंड दैट इनोसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. फुर्सत वाले दिन. अरिजीत की एप्सी वॉइस है गाने में. बहुत सारे सॉफ्ट गिटार स्ट्रमिंग, एकूस्टिक हैवी विशफुल नोट में सिंगिंग आप कह सकते हैं. ये वो गाना है दैट विल रिमाइंड यू ऑफ योर स्कूल कॉलेज एंड दोस्तों वाले डेज. लाइक पुरानी जीन्स और गिटार वो दिन भी क्या दिन थे वाले इमोशंस. लाइट अप नेक्स्ट.

0: It's get in and go vent at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya 2026 ki BZ Woodland lease kijiye from $175 weekly for 48 months. Or paye $7,000 ke incentives. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye Markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
1: अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 to $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

पुराने क्लासिक्स द गोल्डन हिट्स ऑफ बॉलीवुड अगर आपको पसंद है या आपके घर में बड़ों को, तो भाई डोंट मिस दिस वेरी वेरी स्पेशल म्यूजिकल इवेंट द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, जो हर साल आपके लिए लाते हैं चुन चुन कर गाने और सिंगर्स द सुरताल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रमन कांजी, जिनकी म्यूजिक डायरेक्शन में ये सारे गाने लाइव आपको सुनने को मिलते हैं. This year is their 16th year together, entertaining us with Hindi filmों के सदाबहार नगमे. और ये साल और भी स्पेशल है, क्योंकि it's a tribute to OPP Constable Tarun Bali. Tickets are starting from $30 up to $65. आपके बजट में कोई ना कोई रेंज फिट हो ही जाएगी. It's on October 4th, 5 to 9:30 p.m. at Rose Theatre, Brampton. For tickets, call Purushottam ji at 647-544-2473. 647-544-2473.

मैं ऐसी वाली खबर की खबर नहीं हूं ना, तो शायद काम चल भी जाए। पर अगर खबरों से बेखबर होगा इंसान तो वो इग्नोरेंट कहलाता है। ऑन दिस वर्ल्ड न्यूज डे टुडे, जहां उन सब लोगों को एक ट्रिब्यूट दिया जाता है जो हम तक सही सही समाचार लाते हैं, हम आम पब्लिक को भी ये याद दिलाया जाता है कि भाई इस एवरीथिंग ऑन इंटरनेट के जमाने में फेक न्यूज से भी बचो। जो भी पढ़ो सुनो, यूं ही उस पर भरोसा ना करो, उस पर अपनी एक सजग अवेयर रिसर्च जरूर करो, एंड देन ट्रस्ट योर ट्रस्टेड सोर्स। बाकी तो जितना रायता और मसाला कई बार ये सोशल मीडिया एंड नॉर्मल मीडिया पर न्यूज लेती है ना आजकल, आई गेस न्यूज से डिटॉक्स करना भी जल्दी एक नया हेल्दी ट्रेंड बन जाएगा। नहीं, रेस्ट फॉर हैप्पी हैप्पी माइंड एंड सोल। स्टे ट्यून्ड ऑन फिल्मी नुक्कड़ विद स्वाति एंड हंसल।

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइट सेल्स इवेंट का फायदा उठाए। सिर्फ 0% से फाइनेंसिंग और पाए $500 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ सितंबर 30 तक है। हम पे करते हैं टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com, ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai, doing
0: a proud member of Wayne's Auto Group.
2: Realtors, सोचो अगर ब्रोकरेज आपकी एक्चुअली हेल्प करे आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में. Absolutely no desk fees for a limited time, best commission splits in the industry, one-on-one mentorship, practical sales or lead generation training bhi. इतना ही नहीं, in-house state of art studio में social media videos, property videos और पूरा social media content generation बिल्कुल free, unlimited, worth hundreds of dollars. सारा admin और documentation भी admin department ही करेगा आपके लिए, हमेशा. ऐसा हो तो कैसा हो? वेल, होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी में आपके पेपर वर्क और एडमिन का काम वही संभालते हैं, जिसे आप अपना फोकस क्लाइंट्स बनाने में और डील क्लोज करने पर रख सकें. और हाँ, लीड्स भी वही प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप अपने रियल स्टेट करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो होम लाइफ प्लैटिनम रियल्टी से चिढ़ जाइए. कॉल 647-859-2000, 647-859-2000.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: घर कहीं भी लेना हो

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: Let's turn it up.
4: Let's kick it up.
5: Let's shake it up.
6: Let's get it up. Let's bounce it up. Offbeat club music. Off the beat. It's Buffy time.
7: We are controlling transmission.

वेल, ये वड्डी शराबन आई गेस गॉट हर इंस्पिरेशन फ्रॉम द कोट जहां ये कहा जाता है द मोर यू वे द हार्डर यू आर टू किडनैप. सो ऑन दिस नेशनल बियर्स डे टुडे आई गेस दिस कैन बी एन एक्सक्यूज टू स्टे सेफ.

0: Toyota Get In and Go Event at Don Valley North Toyota, Corolla and Corolla Hatchback और GR Corolla की huge selection में से अपनी favorite Toyota choose कीजिए और अपनी trade-in पर पाए top dollar. जल्दी कीजिए, wait मत कीजिए. आज ही visit कीजिए Don Valley North Toyota, Canada's number one volume Toyota dealership. DonValleyNorthToyota.com, located 300 Steeles Avenue, East Markham, Perth. Proud member of Vane's Auto Group.
1: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड ऑफ मॉर्गेज सोल्यूशन, बीट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है, इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 647-327-8111 647-327-8111।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: अच्छा सुनो, अपनी आंखें बंद करो। सरप्राइज,
5: वाओ, इतना सुंदर घर, सजावट और पूजा का सारा सामान भी है।
4: जी बिल्कुल, ये सब पॉसिबल हुआ इंडिया सजावट एंड पूजा हट की वजह से। पिछले 15 सालों से ब्रैम्पटन में बस एक ही लोकेशन, बेशुमार सजावट का सामान, वैरायटी ऑफ टेंपल्स, गॉड गॉडेसेस के ढेरों स्टैचूज, पूजा एवं हवन सामग्री, पूजा यूटेंसिल्स, वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, फेंग शुई, वास्तु प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ, ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 में बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। धत, ऐसी गिजी बिडी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ मैं। वेल, नोबडी वांट्स टू, पर ऐसा हमें फिर से याद दिला गए कि हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते जो एक दायरे में बंधी हो और एक फिक्स्ड फ्रेम के अंदर आती हो। हम सब लिव लाइफ किंग साइज वाला मोटो कहीं ना कहीं दिल में रखते हैं, फॉलो कर पाते हैं या नहीं वो अलग बात है। ये हमें बता गए रणबीर बाबा, कौन सी फिल्म में, ये जवानी है दीवानी, अगर आपने देखी हो तो जरूर पता होगा। देन देयर वाज अ रिस्क, तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर सेल्समैन हूँ। हम सबको ये याद दिला गया कि रिस्क से घबराओ मत, इनफैक्ट मिशन बनाओ जी जान से, उसमें कूद जाओ। ये भी हमें बता गए वो रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर फिल्म में, कौन, रणबीर बाबा। आज उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका है आज बर्थडे। टॉर्च बेयरर ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड रणबीर कपूर ने अपनी खासी जगह बना ली है बॉलीवुड में विद हिज इंपेक्टेबल एक्टिंग। उनकी फिल्म से एक गाना इस वक्त तो बनता है।

0: Toyota Get In and Go Event at Don Valley North Toyota. Corolla and Corolla Hatchback और GR Corolla की huge selection में से अपनी favorite Toyota choose कीजिए और अपनी trade-in पर पाए top dollar. जल्दी कीजिए, wait मत कीजिए. आज ही visit कीजिए Don Valley North Toyota, Canada's number one volume Toyota dealership. Don Valley North Toyota.com. Located here 3300 Steeles Avenue, East Markham. At Don Valley North, Don Valley North Toyota. A proud member of Vane's Auto Group.
1: पुराने क्लासिक्स द गोल्डन हिट्स ऑफ बॉलीवुड अगर आपको पसंद है या आपके घर में बड़ों को तो भाई डोंट मिस दिस वेरी वेरी स्पेशल म्यूजिकल इवेंट द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड जो हर साल आपके लिए लाते हैं चुन चुन कर गाने और सिंगर्स द सुरताल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रमन कांजी जिनकी म्यूजिक डायरेक्शन में ये सारे गाने लाइव आपको सुनने को मिलते हैं दिस ईयर इज द 16th ईयर टुगेदर Entertaining us with Hindi filmों के सदाबहार नगमे और ये साल और भी स्पेशल है क्योंकि इट्स अ ट्रिब्यूट टू ओबीपी कांस्टेबल तरुण बाली टिकट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम $30 अप टू $65 आपके बजट में कोई ना कोई रेंज फिट हो ही जाएगी इट्स ऑन October 4th 5 to 9:30 PM एट रोज थिएटर ब्रैम्पटन फॉर टिकट्स कॉल पुरुषोत्तम जी एट 6475442473 6475444 2473

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेन्स फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेन्स एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेन्स एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: हर एक great journey शुरू होती है एक सही partner के साथ. Vains Auto Group में हमारे dealerships का wide network diverse communities को proudly serve करता है. Expert car buying guidance, premium service और ऐसा support जो आपकी language समझे. हर dealership का promise एक ही है. Trusted care, consistent service, or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Vains Auto Group is always there. Vains Auto Group, Vains Auto Group, Canada. Visit VainsAutoGroup.com.
3: फायदा उठाएं बैक टू स्कूल के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 इयर्स फिक्स्ड 3.94%, 5 इयर्स फिक्स्ड 4.04%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.45%। साथ ही ले हॉट हॉट कैश बैक भी अप टू $5,600। इतना ही नहीं, एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट अमित।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

सॉरी मांग लो, सॉरी कह लो, टेक इट इजी पॉलिसी लगता है मुझे तो कई बार कुछ लोगों का, कि भाई हमने तो माफी मांग ली, हम अच्छे बन गए और फिर वापस जैसे थे वैसे ही बन गए, है ना मजे की बात। पर सॉरी बोल के बात खत्म करना एक स्मार्ट मूव भी तो होता है, साथ में कोई माफी मांगे तो उसे फटाक से माफ कर देना एक्चुअली स्मार्टर मूव होता है। अब पूछो क्यों, वो कहते हैं ना बड़े लोग कि माफी मांगने से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है, और वो भी कहते हैं ना कि माफ करने से जैसे कैदी को हम आजाद कर देते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली उस गुस्से में कैदी हम अक्सर खुद ही ज्यादा होते हैं, इवन कल्प्रिट से भी ज्यादा समटाइम्स, कि इसने हमें ये कैसे कह दिया, उसने हमारे साथ ये कैसे कर दिया। सो दिस माफीनामा गिव्स अस समटाइम्स दैट वेरी रिक्वायर्ड मेंटल पीस टू। सो ऑन दिस नेशनल डे ऑफ फॉरगिवनेस टुडे, अ क्विक रिमाइंडर फॉर अस ऑल हियर इज कि माफी दो, माफी लो, प्यार दो, प्यार लो, और जो भी अब हो ही चुका है भाई उसको जाने भी दो, जाने भी दो। लाइंड अप नेक्स्ट।

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइट सेल्स इवेंट का फायदा उठाए। सिर्फ 0% से फाइनेंसिंग और पाए $500 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ सितंबर 30 तक है। हम पे करते हैं टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai, doing business
0: A proud member of Wayne's Auto Group.
2: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094।

लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: बस का लगा न मुझे SMS का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: टू एडवर्टाइज विद फिल्मी नुक्कड़ ऑन CMR एट 5 PM योर प्राइम ड्राइव टाइम शो। कॉल स्वाति एट 6478305042, दैट 6478305042। इट्स द फ्री टाइम।
2: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न PV राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: घर कहीं भी लेना

रियल्टर्स, सोचो अगर ब्रोकरेज आपकी एक्चुअली हेल्प करे आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में. Absolutely no desk fees for a limited time. Best commission splits in the industry. One-on-one mentorship. Practical sales or lead generation training bhi. Itna hi nahi. In-house state-of-art studio mein social media videos, property videos aur pura social media content generation bilkul free. Unlimited. Worth hundreds of dollars. Sara admin aur documentation bhi admin department hi karega aapke liye. Hamesha. Aisa ho to kaisa ho? वेल होम लाइफ प्लैटिनम रियलिटी में आपके पेपर वर्क और एडमिन का काम वही संभालते हैं जिसे आप अपना फोकस क्लाइंट्स बनाने में और डील क्लोज करने पर रख सकें. और हाँ, लीड्स भी वही प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप अपने रियल स्टेट करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो होम लाइफ प्लैटिनम रियलिटी से चिढ़ जाइए. कॉल 6478592000, 6478592000.

Almenukers, CMR 101.3 FM पर you are with Swati and Payaswini. And a quick reminder, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं after this show as well, तो आप हमसे हमारे social media पे जुड़ सकते हैं. हमारा handle रहता है RJ_Swati_Toronto. चाहे वो Instagram हो या Facebook या TikTok या Twitter बोले तो X या LinkedIn या कोई और. आप हर social media पे हमसे RJ_Swati_Toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. That's my handle at all the social media places. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें RJ_Swati_Toronto. एंड इफ यू वांट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 6478305042. दैट 6478305042.

kick. It's snooker hit after hit. लता जी का भी जन्मदिन है और ये जिक्र करना तो बनता ही था। आज का शो इसके बिना कैसे खत्म हो सकता है, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि इट वुड बी लाइक कहते ना सूरज को दिया दिखाना, यहाँ पे तो दिया भी नहीं, सूरज को अगरबत्ती दिखाना जैसा हो जाएगा। पर आपको उनके गाने के साथ छोड़े जाती हूँ। दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे फिर कल।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मितावन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम जारी है, दिल खोल कर आपसे के लिए दीजिए। रबते के नंबर है 905-257-1342।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।

0: Assalamu alaikum. I'm your counselor candidate, Naila Saeed from Ward 7, Mississauga. I'm an educator, mother of three daughters, master's in public administration, and proudly serving the community last 28 years. Vote in support. Main 28 saal se community ke saath judi hoon aur maine apni successful business yahan establish kiya hai jiske zariye se hazaron subsidized child care spaces create hue hain, kai so jobs create hue hain. Now I want to make a real change in Ward 7. I'm bringing that practical, compassionate leadership on the table, and I need your help to be your voice. I need your support to become your representative for Ward 7, Mississauga, as a councillor candidate.
1: Shabana Hassan, founder of Key Financial Investment and Insurance Inc. aur unki team aapki har tarah ki financial planning mein aapki help kar sakte hain. Life insurance, supervisor insurance, visitor insurance, mortgage insurance, RDSPs, RESPs, RRSPs, TSFAs, FHSAs ke saath saath health and dental plans, disability and critical illness insurance, retirement planning aur state planning ki professional services ke liye aaj hi call kare Shabana Hassan 647-997-722. For let's secure your financial future together, call Shabana Hassan 647-997-7224. Sahaja Kerala Ayurvedic Herbal Consultation Center, jahan Kerala Vedya Ratna PV Raj, jo ki khandani ved hain, nabaz dekhkar jadi bootiyon se ilaaj karte hain. Beshumar mareez unki herbal dawaon se shafayab ho chuke hain. Asthma, allergy, skin problems, kamar ya ghutnon ka dard, arthritis, hair problem, gas problem, ulcer, ladies problem, weight loss, psoriasis aur sari hi bimariyon ka ilaaj karke unka jad se khatma karte hain. Brampton aur Scarborough do location se aapko serve kar rahe hain. Call kijiye 647-327-8111. It's 647-327-8111.
2: अपने मकान की next month closing है? कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे.
2: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month.
3: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं.
2: That's wonderful.
3: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा.
2: Brampton में ये कहाँ पे है?
3: On Bovet, just west of McLaughlin, telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 4165700157
1: जी हाँ अंजुम कुरैशी साहब जिनके रابطے के नंबर 4165700157 है बहुत अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है आप गिर जाते हैं बिल्कुल परेशान ना हो बहुत जबरदस्त लॉ फर्म है बहुत अरसे से जिनके साथ काम कर रही हैं आपके अपनी जुबान में बात करती हैं मैक्सिमम कंपनसेशन और फीस जब आपका केस सेटल हो जाए उसके बाद 4165700157 رابطے का नंबर है खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब नमस्ते और सस्ते
6: जी हाँ हमेशा लेकर आते हैं एक अच्छी सी अवेयरनेस और आपको याद दिलाते हैं कि जहाँ आपके हुकूक हैं जहाँ आपकी ड्यूटीज हैं वहाँ पर आपके हुकूक भी हैं यानी अगर आप कभी भी अगर गाड़ी में होते हैं और आपने इंश्योरेंस ली हुई होती है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी की यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई के बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी आपने नहीं चलाई और बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना न सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपकी बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है अल्लाह ना करे अगर आप काम पे जाने के काबिल नहीं रहते आपका घर कहाँ से चलेगा आपकी जिंदगी की जरूरियात कहाँ से पूरी होंगी और उस पे सोने पे सुहागा कि अगर आप एट फॉल्ट हैं और आपने किसी को मार दिया और वो जब आपको सू करेगा तो ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होगी हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचें और अपने बारे में भी सोचें कि कार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है रोड पे जब आप होते हैं तो क्या आपने अपनी ड्यूटी निभाई अगर आपने अपनी ड्यूटी निभाई तो आपने दूसरों के लिए भी अच्छा किया और अपने के लिए भी अच्छा किया हमारा काम होता है आप तक वो अवेयरनेस पहुंचाना जिसका ताल्लुक ٹریفک یعنی کہ کار حادثے سے ہوتا ہے, اور کار حادثے میں آپ کی انشورنس ہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے اور بہت بڑے مسئلوں سے بچاتی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے لائرز نہ صرف بیٹھ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کار ایکسیڈنٹ میں وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد لیتے ہیں. اور میں جیسے کہ ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کی اپنی انجم, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا اپنا بندہ آپ سے بات کر رہا ہے, اور کار ایکسیڈنٹ میں آپ اداس ہوتے ہیں, دل اداس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور اس وقت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے اور ہماری ٹیم آف لائرز آپ کے ساتھ ہوتی ہے جو نہ صرف آپ کے حق کا پیسہ دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد لیتے ہیں. 416-570-0157. زندگی رہی تو ایسی ہی کام کی باتیں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی اویئرنیس آپ تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو کوئی ٹریفک ٹکٹ مل گیا ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ایک ٹیم موجود ہے جو آپ کے ٹکٹس کو بھی ڈیل کرتی ہیں.
5: بس یہ نمبر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. زندگی رہی تو منڈے کو پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.
7: گڈ نائٹ. بہت شکریہ انجم قریش صاحبہ. مدم سامی نمبر نوٹ کر لیں, 416-570-0157, 416-570-0157. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. کے پی میں صورتحال خاصی کہیں کہ انسرٹنسی ہو گئی ہے. گورنر آ سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ قیام ہو سکتا ہے سسٹم کا, اور اگلے دو دن بہت اہم ہیں. جیسے پرائم منسٹر کی واپسی ہوگی کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پھر پیشکش کی ہے. اب کیا آگے چیزیں چلیں گی, ایک دو دن میں واضح ہو جائیں گی. جس پہ بات کریں گے آگے چل کے. اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی شاعری.

0: Telecom. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम की एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं और हुकूमत से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन हासिल करें जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई पर्सनल गारंटी नहीं और ना ही कोई इनकम रिक्वायरमेंट। इनकी फीस सिर्फ $199 है। अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175।
2: जी हाँ, 4372643175 ये नंबर अपने पास महफूज करें। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50,000 से 1,70,000 तक का लोन दिया जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं है। वंस इन ऑल कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, जिंदगी में बाज़ ऐसे मौके आते हैं जिसका आपको फायदा उठा लेना चाहिए। नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, मजीद डिटेल में सुनेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
3: थैंक यू वेरी मच जी, सभी को सलाम।
2: नंबर नोट कीजिए 4372643175। अच्छा, बहुत से स्ट्रिंग अटैच होते हैं जब भी आप लोन लेते हैं, बहुत सारी चीजें देनी होती है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो इस लोन में कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी तो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी कोई चीज तो नहीं है?
3: यहाँ पे आपको हुकूमत फंडिंग दे रही है, कुछ भी गिरवी नहीं है इसके अंदर, बैंक नहीं दे रहा आपको, हम किसी बैंक वाली फंडिंग में डील ही नहीं करते, तो कुछ झोल है ही नहीं।
2: ठीक है,
3: 50,000 से 1,70,000 हासिल करे हुकूमत आज दे रही है, कल को क्या पता हुकूमत यहाँ पे कट्स कर दे, क्योंकि जो हालत चल रही है देश की आपको पता ही है, कुछ छुपा नहीं है, पीछे ना रही है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आएं।
2: 4372643175 इनके रास्ते का नंबर है, मिसागा में इनका ऑफिस है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अच्छा, अप्रूवल रेट क्या है इस लोन का और कोर्सेज के बारे से बता दीजिएगा, आसान होते हैं, मुश्किल होते हैं, पासिंग रेट क्या है कोर्सेज का?
3: अप्रूवल से पहले हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, आपके आपका एनओए लगता है 2025 का, नंबर वन। नंबर टू आपका मैरिज सर्टिफिकेट, नंबर थ्री आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसमें कुछ चलाकी है नहीं, गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से ही हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को ये आड़े टेढ़े लगते ही नहीं कि अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा, अभी डॉक्यूमेंट लगते हैं तो अप्रूवल आता है, और हम तो फीस भी बाद में लेते हैं, तो कोई चलाकी मीठी बातें नहीं है। कॉल करें अभी, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आएं।
2: नंबर टू कॉल इज 4372643175 4372643175। अच्छा, लोन जैसे आपने बताया 50,000 से 1,70,000 तक ले सकते हैं, तो इसको कहाँ इस्तेमाल, दूसरे लोन्स बाज़ का लोग बहुत परेशानी आजकल, आपको पता है डेट बहुत से आए हुए हैं, तो इसको उनके रीपे के लिए, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी जाहिर है इस लोन से गवर्नमेंट ये देखती है चीज़ें, तो बाकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सकते हैं इससे?
3: बिल्कुल जी, देखिए एक तरफ आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आसान से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप लोग एलिजिबल हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्स नहीं है, टीचर नहीं है, मत डरिए मत डरिए, आप अंकल हैं, आंटी हैं, आप उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ हैं, सारे क्लाइंट्स हमारे इसी एज ग्रुप के हैं। ओके, ऑन अदर हैंड आपके पास अगर फैमिली ऑफ फोर है तो $1.5 लाख आ गया, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास मिला के।
2: ठीक है,
3: अब कहीं भी खर्च करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ लोग ने इससे लोन उतारे हैं अपने और जो फंसे हुए थे, इसलिए आप पीछे ना रहिए, हुकूमत दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, तो आपको कुछ भी गिरवी नहीं है यहाँ पे।
2: बिल्कुल ठीक है, 4372643175 4372643175 पे अभी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें। अच्छा, फीस आपकी कितनी है और कब आप लेते हैं और क्या जो फंडिंग है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है वो क्लाइंट की जाती है और कितना टाइम लग जाता है? 2-3 महीने तो लग जाते होंगे, इससे भी ज्यादा, तो लोग फीस कब देते हैं, पहले देते हैं बाद में देते हैं?
3: 2 महीने एवरेज टाइम लगता है क्लाइंट के गवर्नमेंट फंडिंग जाने का।
2: ठीक है,
3: हाँ जी, 2 महीने में फीस, हम लेते ही बाद में फीस, हमें ट्रांसपेरेंट रखें सब कुछ, एंड टू एंड बाद में काम होने के बाद 199 फीस क्लाइंट हमें अपनी ईमानदारी से देते हैं,
2: ठीक है,
3: मिठाई का डब्बा भी देते हैं, वो अलग बात है, हम मानते नहीं मिठाई का डब्बा, लेकिन लोग प्यार से दे जाते हैं,
2: सही है,
3: ओके, हाँ जी। अब इसमें $1.5 लाख आपको आता है, हमने कोई लालच नहीं है सर, बहुतों को असिस्ट कर चुके, नकली कागज नहीं लग रहा, मैंने ना आपसे रिश्वत लेनी है ना मैंने आगे किसी को रिश्वत देनी है,
2: सही,
3: साफ काम है, कोई कागज नहीं मिल रहा, एक तरफ तालीम हासिल करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, एग्जाम्स नहीं है, टीचर ही नहीं है, 20 घंटे आपने लॉग इन करना है पोर्टल में,
2: सही है,
3: सर्टिफिकेट भी आता है आपको 1 से 2 साल का अकाउंटिंग का बिजनेस का, दूसरी तरफ 50,000 से 1,70,000 बिना गारंटी के, बिना किसी कुछ गिरवी रखे, आप सर्विस कैनेडा से लोन लेते हैं, सीआरए से नहीं लेते,
2: बिल्कुल,
3: कॉल करें 437-264-3175
2: 4372643175। और ये बता दीजिएगा कि क्योंकि बहुत से लोग वीकेंड पे ही फारिग होते हैं, तो वीकेंड पे भी आपका ऑफिस ओपन होता है?
3: बिल्कुल जी, सैटरडे हमने इस सैटरडे से फिर से रिज्यूम करा ऑफिस खोला,
2: ओके,
3: तो आप हमारे ऑफिस वीकेंड पे आ सकते हैं, हमें अभी कॉल करें, कल भी हमारे ऑफिस आप आ सकते हैं, असेसमेंट कराएं, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई चलाकी मीठी बातें नहीं है, मत डरिए।
2: 4372643175 पे अभी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका नागपाल जी, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 4372643175 पे आप अभी कॉल कर लीजिए। वक्त हो चला आपको ले चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करते हैं वानी।
4: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
5: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मी वानी विद लोकल अपडेट। Gulf mayor is beyond upset after university homecoming devolves into violence and vandalism. US President Donald Trump says he expects Canada trade deal within a week as import ban looms. Hamilton steel plant Stelco laying off hundreds of workers in response to market uncertainty. The Toronto Transit Commission says it is aware of videos circulating online that purportedly shows several youths breaking into the TTC North Queen Yard in Etobicoke and taking a bus for a reckless joyride. Toronto mayoral candidate Brad Bradford promises to cut water bill by 25% if elected. The Toronto Police Services says a 16-year-old male pedestrian was among the 3 people injured after a vehicle appeared to lose control in Scarborough. A man charged in connection with the 2023 assassination of Hardeep Singh Nijjar in British Columbia has been added to the Federal Bureau of Investigation's 10 most wanted list. Toronto Police Officers pleads guilty to 1 charge in Project South investigation. Hamilton Police are searching for an urn stolen from a home that has been undergoing repair after a fire. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
2: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी, आप सुन रहे पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा बैकडोर 6 से 7 अहम मुलाकातें और राबतों के इतलात हैं, जिसके बाद रियासती और हुकूमती हलकों की जानब से तहरीक इंसाफ के लिए एक बाकायदा रेड लाइन खींच दी गई। इंसार अब्बासी साहब वैसे इस किस्म की खबरें लेकर आते रहते हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता 5 से 6 हफ्तों के दौरान मुख्तदर हलकों के करीब समझे जाने वाले एक अहम हुकूमती शख्सियत और पीटीआई क़यादत के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। इन राबतों का बुनियादी मकसद इत्तेजाजी मार्च की तारीख इंतजामी अमूर नहीं बल्कि आइंदा जो सियासी कश्मकश की नौयत क्या हो सकती है उसको तय करना था। इन मुलाकातों से जो वाज़ेह पैगाम आया वो यह है कि रियासती इदारों में पीटीआई के धरनों, सड़कें बंद करने, इस्लामाबाद पर चढ़ाई तसादम पर मबनी सियासत की बर्दाश्त अब मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुकी है। सहाफी के ज़रिए के मुताबिक पस पर्दा मुज़ाकरात में पीटीआई को एक मुमकिन सियासी फार्मूला और रास्ता पेश किया गया। अगर पीटीआई तसादम, लॉकडाउन और मार्च की सियासत मुकम्मल और बज़ाबत तौर पर गुरेज का अज़्म करती है, इजहार करती है, तो इसके बदले में फिर इमरान खान से मुलाकातों की बहाली, सेहत व इलाज और हॉस्पिटल मुंतकली जैसे इंसानी मामलों में कुछ बड़ी नरमी पैदा की जा सकती है, गुंजाइश की जा सकती है। बुशरा बीबी को भी बनीगाला मुंतकिल करके उसे सब जेल करार कर देने जैसे सूरतकारी के इकदाम पर भी गौर किया जा सकता है, बशर्त है कि इन सहूलियात को दोबारा सियासी महाजरा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इंतजामी अमूर पर रोशनी डालते हुए उसमें लिखा गया कि इस बार पीटीआई को अपने ही सूबे के अंदर वो अमली सहूलत और पुलिस की मामनत भी हासिल नहीं हो सकी जिसकी वो तवक्को कर रही थी। पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक तरफ खड़ी नजर आती है, बल्कि सूबाई वज़रा और असम्बली के जो दवाकी अरकान उन पर भी शदीद दबाव रहा है। और अब जो 4 अक्टूबर को जो पिशार से मार्च की तारीख जो है उसके पीछे भी यही मुहरिकात हैं। और सवाल अब यह है कि पीटीआई पुरअमन पार्लिमानी और सियासी जद्दोजहद का रास्ता चुनती है या ताकत के इम्तहान रुझान के रास्ते पर चलती है। अगर पीटीआई खींचेगी इस लकीर को अबूर करके फिर पुरानी सूरत हाल पैदा करती है तो फिर हो सकता है कि रियासत की तरफ से उसको सख्त तरीन जवाब दिया जाए। ये उनकी असेसमेंट है इंसार अब्बासी साहब की। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। अजनाब ट्रिब्यूट टू उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। शेर मियादाद बहुत ज़बरदस्त कवाली, बहुत ज़बरदस्त कवाल हैं और कवाली नाइट होने जा रही है फ्राइडे 6 अक्टूबर को गैलेक्सी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। और आप टिकट्स के लिए अब्दुल रशीद खान साहब से राबता कर लीजिए, इसको मिस मत कीजिए। बहुत ज़बरदस्त कवाली, दो प्रोग्राम हैं उनके। ये जो फ्राइडे को है ये गैलेक्सी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर में है। आप टिकट्स के लिए अब्दुल रशीद खान साहब से 6477793162 6477793162 पे आप रब्ता कर सकते हैं। और फिर अपना डेरा जो है वहाँ रंगो कवाली की नाइट होने जा रही है। आउटडोर ये प्रोग्राम होगा। शेर मियादाद खान और शगुफ्ता आवान इसमें परफॉर्म करेंगी। अक्टूबर 4th को होगा, संडे का दिन है, अक्टूबर 4th को। ये 3490 ऑर्डरली रोड पिकरिंग में मनाया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आसिफ चौधरी साहब से आप रब्ता कर लीजिए। फॉर टिकट्स इन्फॉर्मेशन 416-857-1427 416-857-1427 आसिफ चौधरी साहब के रब्ते का नंबर है।
6: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088 9052680088 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा।
7: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन। 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 11-10 ब्लूर स्ट्रीट इस ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन। 9052325677।
8: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
9: कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। GTA भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
10: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
11: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
12: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
13: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-745-5050-7465-50।
14: मेरा नाम जैनब अजीम है। आई एम रनिंग फॉर मेयर ऑफ मिल्टन। मैं मिल्टन में ही पली थी। आई टीच एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स वेयर आई डिड माई मास्टर्स। आई वर्क एट द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफिस फॉर 3 years एंड मोस्ट रिसेंटली मैंने जोरान ममदानी के कैंपेन पे भी काम किया है। And this year we are running to bring careers close to home, transit every 20 minutes to deal with the parking and traffic problems, and alive after 5, which means more things to do in Milton so you don't have to go to Mississauga. Make sure to vote for Zainab Azeem for mayor of Milton on October 26th, and you can find more icon@milton.com.
8: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
15: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
16: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
8: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147, 6472714147।
2: जी हाँ, 6472714147, 6472714147। शिराज हुसैन साहब के रबते का नंबर है। वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी प्रोफेशनल मॉर्गेज एडवाइजर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, 2 लोकेशन से आपको, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगह से आपको सर्व करते हैं। आपका केस देख के आपको बता देंगे कि क्या मुमकिन है, क्या नहीं है। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के प्लान इनके पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। शिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम।
17: कैसे हैं?
2: बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं,
17: शुक्र अल्लाह का।
2: अच्छा, आजकल थोड़ा सा अभी एक्टिविटी हो गई है, थोड़ा ज्यादा शुरू हो गई, हम देख रहे हैं, और प्री कॉन में भी है और बाकी भी है, तो अभी क्या सूरत हाल है? इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग कहते शायद बढ़ ना जाए, तो मॉर्गेजेस के हवाले से कुछ अपडेट दीजिए हमारे सुनने वालों को।
17: बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट तो अभी कुछ लोग ही वाली बात, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम बायर्स जो है ना बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं। 30-year amortization मिल रही है, उनको रिबेट वापस मिल रहे हैं, बिल्डर से मिल रहे हैं, रीसेल पे मिल रहे हैं, 5% 5+10% पे वो क्वालिफाई कर रहे हैं हम उनको। तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे पास रेट्स, इंटरेस्ट रेट बड़े अच्छे हमें मिल रहे हैं बैंक से, 3.4-3.5 तक भी हम ला के दे रहे हैं।
2: अच्छा।
17: तो उसके लिए हाँ, वो हमारे पास रेट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। तो अभी अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो 3.9 वेरिएबल, 3.8 हम उससे नीचे करा के दे रहे हैं क्लाइंट्स को।
2: वेरी राइट, मतलब सामीन, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, 5-10% पे भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे और रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 6472714147, 6472714147। अच्छा शिराज साहब, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत से लोग हैं, पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया था, और अभी क्योंकि बायर्स मार्केट है तो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन भी लोगों के पास आ जाती हैं, तो उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं जो 2-3-4 प्रॉपर्टीज़ हों और लेना चाहते हों?
17: बिल्कुल, मल्टीपल की तो हम हेल्प कर ही रहे हैं, उसके साथ अगर किसी का क्रेडिट खराब है, लेट्स से किसी का क्रेडिट 600 से भी नीचे है, तो अगर उनको भी मॉर्गेज करानी है तो वो भी हमें कॉल करें, हमारे पास लैंडर्स हैं। अक्सर क्या हो रहा है कि डेट्स बढ़ चुके हैं, कोई लेट पेमेंट हो चुकी है, कोई कलेक्शन आ चुकी है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो स्कोर नीचे आ चुका हुआ है। तो अगर आपकी 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी तक भी है आपकी, तो आपका स्कोर कम है, तो आप हमें जरूर कॉल करें उसके लिए भी मैं बहुत ऐसे हमारे पास लैंडर्स हैं, रेट भी उनके अच्छे हैं, ये नहीं कि बहुत प्राइवेट लैंडर की तरह नहीं है कि 8-9% पे नहीं है, बहुत बहुत कम रख के हम उनको ना अप्रूवल करा के दे रहे हैं, तो वो भी जरूर हमें कॉल करें
2: 4372714147 पे आप रابطہ कर लीजिए। अच्छा, एक लोग बहुत कहते हैं कि जो कमर्शियल मॉर्गेज है वो शायद 35 या 40 50% पे आपकी होती है, उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं कमर्शियल मॉर्गेज के लिए?
17: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 35% या 40% पे होता है। मैंने अभी डील कर रहा हूँ, वो पैकेज है, उसके साथ हमने लोन भी कराया, मॉर्गेज भी करा रहे हैं, तो हम मैंने 80% पे कराई है वो।
2: अच्छा,
17: तो ए लेंडर से कराया है, हाँ कमर्शियल भी 80% पे हम करा रहे हैं। बेसिकली वो पैकेज बनता है पूरा बैंक के साथ कि हमें क्या उनके साथ प्रोडक्ट चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, तो वो चीजें जो है ना वो बहुत हेल्प करती है। 20% पे भी हम करा रहे हैं, 25% पे भी करा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं।
2: बिल्कुल,
17: ये बड़ा मैटर करता है।
2: बिल्कुल ठीक है, 4647-271-4147 भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आखिर में लाइन ऑफ क्रेडिट लोन्स, बिजनेस लोन्स हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसमें किस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगे?
17: बेसिकली जो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट है ये तो ऑलमोस्ट हर बंदे की जरूरत है। बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट हम कर रहे हैं, स्टार्टअप बिजनेस लोन हम करा के दे रहे हैं, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट करा के दे रहे हैं, और उसके साथ अगर आपका सबसे अच्छा ये है कि अगर आपका बिजनेस रन है और आप उसमें आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकती है अपटू 500,000 की।
2: अच्छा।
17: अगर आपने स्टार्टअप बिजनेस लोन करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टअप बिजनेस लोन हम अपटू $500,000 का करा के दे रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बैंक आपको ऑफर करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इनको लेना कैसे है, इनको यूज कैसे करना है। तो बहुत ऐसे बैंक हैं, हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने इसको गलत यूज किया है, तो जो लोग गलत यूज करते हैं तो सबके दिन में ये जा चुका हुआ है कि ये गलत है, बैंक नहीं देगा,
2: नहीं देगा।
17: अगर आप उसको लिजिट कर रहे हैं, आप उसको अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास लोकेशन है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट, आप जरूर हमें कॉल करें, हम आपको करा के देंगे।
2: नंबर टू कॉल इज 6472714147 6472714147। कुछ और ऐड करना चाहें आप शिराज साहब?
17: हमेशा जैसे आप कहते हैं ईस्ट हो या वेस्ट हो, आप जरूर हमें कॉल करें। अगर आपका क्रेडिट खराब हो चुका हुआ है तो आप तब भी मुझे कॉल करें। अगर आप किसी भी रीफाइनेंसिंग में आप रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट निकालना चाह रहे हैं, अगर आपको आपके डेट्स ज्यादा आ चुके हुए हैं तो आप उसको पे ऑफ करके एक मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, सेकेंड मॉर्गेज आपके पास है, तो उसके लिए भी जरूर हमें कॉल करें।
2: नंबर टू कॉल 6472714147 6472714147। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऑफिस नंबर नोट कीजिए 6472714147 6472714147। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। मिश्रक अवस्था में सूरत हाल जो है अब ब्लॉक बनते नजर आते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जो मक्का अकॉर्ड किया है, उसके बाद जो UAE है उसके इसराइल के साथ ताल्लुक अब ज्यादा बेहतर होते या मजबूत होते नजर आते हैं। इमारती खबर एजेंसी ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसके हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इतवार को मेज़बानी की तस्दीक की है। खबर एजेंसी ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा है कि सदर UAE और इसराइली वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। इससे पहले इसराइली ओहदेदार ने कहा था कि नेतन्याहू ने इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से अबू धाबी में इतवार के रोज़ जो है मुलाकात की है। वाज़ेह रहे कि अगर हम इसके पास्ट को देखें तो मई में भी इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने नेतन्याहू के दौरा UAE और इमारती सदर से मुलाकात का बताया था, और ये एक तरह का तजाद इस हवाले से नजर आता है कि बहुत से जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं और उसको मजीद मजबूत बना रहे हैं। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। अच्छा जनाब, नायला सईद साहबा से कोशिश करूंगा आज आपसे मुलाकात भी करवाएं। मिसागा वार्ड 7 से वो काउंसलर के उम्मीदवार हैं। आप nailasaeed.ca पे जाके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 6 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है एडवांस पोलिंग होने जा रही है, तो अगर आप वार्ड 7 में हैं तो जरूर नायला सईद साहबा को सपोर्ट कीजिए और उन्हें वोट दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, आवाज का सफर दिल से दिल तक।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
2: अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आलवन टेजो एंड आई एम रनिंग फॉर मेयर ऑफ मिसिसागा। आई बिलीव आवर रेजिडेंट्स डिजर्व बेटर than more of the same. I'll stop endless tax increases and freeze your property taxes. I'll stop crime and restore safety in our communities. And I'm proud to have the endorsement of Mississauga Muslim Vote. As mayor, I will help religious communities enjoy more opportunities to gather and celebrate. As a child of Indonesian immigrants, I know just how important that is. Vote on October 26th.
3: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial, for customized mortgage solutions, Choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111. It's 6473278111.
7: Apna hum safar, global travel and tours.
8: Global travel and tours. Mrs.